0: प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन कभी कभी इंसान अपनी सफलता, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों पर इतना गर्व करने लगता है कि उसे लगता है जैसे सब कुछ उसी के कारण चल रहा हो। लेकिन यदि अहंकार धीरे धीरे मन की शांति को छीनने का कारण बन जाता है, अहंकार हमें दूसरों की अच्छाइयां देखने नहीं देता और अपनों से दूर भी कर देता है, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है वह केवल हमारी मेहनत ही नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और समय का साथ तथा कई लोगों के सहयोग का परिणाम है। जब मन विनम्र होता है तब रिश्तों में मिठास आती है।

आती है। वाणी में अपनापन आता है और भक्ति में सच्चा आनंद मिलता है, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर का मार्ग शुरू होता है। चिंतन के बाद अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत कर रहे हैं गणपति गणेश की इस वंदना के साथ।

भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि करुणा और समानता के भी प्रतीक हैं। जब इंसान ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है तब उसके भीतर साहस और विश्वास का नया दीप जल उठता है और एक बार भोले बाबा की भक्ति में डूब जाते हैं जब हम, तब हर परिस्थिति आसान लगने लगती है और हर परिस्थिति में अद्भुत सुकून महसूस होने लगता है।

माँ दुर्गा केवल शक्ति का नाम नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। जब जीवन में राह कठिन लगे, मन डर और निराशा से भर जाए, तब माँ का स्मरण भीतर एक नई ऊर्जा जगा देता है।

श्रोताओ, ये थी भक्ति संगीत की आखिरी प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय रचना।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी

उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटुवचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, 7:10 पर आप सुना करते हैं रोजाना कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा आज बात करेंगे वीडी सावरकर जयंती और एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। रमणीक स्थल के अंतर्गत आज आपको सैर करवाएंगे धर्मकोट की और पर्यावरण में आज जानकारी दी जाएगी बुलबुल पक्षी के बारे में। 7:40 पर सुनिएगा हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज साल 1979 में बनी फिल्म सरगम के गीत आपको सुनवाए जाएंगे। नौ बजे आनंदली जी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। इसी दौरान 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार। 10:00 फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर हिमाचली गीत और लोकगीत सुनवाए जाएंगे। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर आप प्रादेशिक समाचार सुन सकते हैं। 11:05 पर आज कुछ पंजाबी गीत सुनवाए जाएंगे। 11:30 का समय रहेगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के प्रसारण का। बारह बजे कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर हम हाजिर होंगे। 12:30 पर बहनें कार्यक्रम मिंजरा सुनेंगी और कार्यक्रम में आज बातचीत का विषय रहेगा अपने हुनर को दें पहचान और रहें जागरूक हर क्षेत्र में। अनाज भंडारण में बताया जाएगा कि आलू का भंडारण किस तरह से करें और खान पान में जानकारी दी जाएगी भरवा शिमला मिर्च बनाने के बारे में। दोपहर 1:00 समाचार सुने जा सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली से। 1:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। इसी दौरान दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर जिला की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से रिले की जाएगी। इसके तुरंत बाद आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे जो शाम 5:00 तक सुने जा सकते हैं। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार। 5:10 पर आज फिल्मों से कुछ भजन सुनवाए जाएंगे। कार्यक्रम युवा मंच युवा साथी सुनेंगे शाम 5:30 पर। 6:06 पर सदाबहार संगीत आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 6:30 पर सुनिएगा वनों को आग से बचाएं, इस बारे में जानकारी कार्यक्रम में दी जाएगी। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा शून्य लागत प्राकृतिक कृषि। 7:42 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:00 विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित करेंगे। देशगान 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज 8:09 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही

कलाकार कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेता कुणाल खेमू द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत। 9:30 पर गजलें सुनवाई जाएंगी, 10:00 हिमाचली गीत और लोकगीत सुनवाए जाएंगे, 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम, चित्रपट संगीत का, और सभा के अंत में समाचार आप सुन सकते हैं 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 150वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षी बलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्माननमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तर पूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षीबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एड्युटेक इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबंध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटलीय संदेशे CBSE इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबंध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,000 वर्षस्य बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः RFP इति गतवर्षस्य अगस्त मासे केंद्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबंधः प्रदत्तः आसीत्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमंत्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासं आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृतास्ति। राज्य सर्वकारेण सर्वेषां मंडल आरक्षि प्रमुखाणां कृते संचेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतन परंपरायाः आरंभः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट क्रीडायां IPL क्रिकेट स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चंडीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वंद्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44.2 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96.1 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
4: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
5: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
4: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
3: Union Home Minister Amit Shah has directed authorities to strictly enforce zero tolerance policy towards illegal constructions within 15 kilometers of the country's borders and demolish all such structures that have come up over the years. Chairing a security review meeting in Bikaner, Mr. Shah assessed security-related issues concerning the border districts of Rajasthan along the India-Pakistan border. The Home Ministry has assigned enhanced responsibility to the district magistrates to ensure legal and financial compliance of banking transactions in the border areas by all banks, verify big business establishments, examine their funding sources, track mule accounts and false companies, identify fake Aadhaar cards and control cross-border smuggling. The West Bengal government has handed over 142 acres of land to the BSF for setting up outposts and barbed wire fencing infrastructure along the India-Bangladesh border. The handover is part of the BJP government's decision, taken at its first cabinet meeting on May the 11th, to transfer 600 acres of land within 45 days for border fencing and related infrastructure projects. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will inaugurate the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi today. The two-day program is aimed at deliberating strategies for the forthcoming Kharif season with a focus on sustainable agriculture, enhanced productivity, climate resilience, infrastructure strengthening and farmer prosperity. Eid ul-Zuha, also known as the Festival of Sacrifice, is being celebrated across the country. The holy occasion honors Prophet Ibrahim's absolute

कार्यक्रम सुप्रभात में सभी श्रोताओं का स्वागत और सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आज का सुविचार। जीवन की सच्ची खूबसूरती केवल अपने लिए खुशियां जुटाने में नहीं बल्कि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपी होती है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख जाए वही इंसानियत का असली अर्थ समझ पाता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी का सफर बहुत छोटा है और इस छोटे से सफर में हम अक्सर अपने सपनों, अपनी परेशानियों और अपनी इच्छाओं में इतना उलझ जाते हैं कि कभी कभी दूसरों के लिए जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इंसान की असली पहचान उसके अपने सुख नहीं बल्कि इस बात से होती है कि उसने किसी और के जीवन में कितनी रोशनी बांटी। किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आना, किसी निराश मन में उम्मीद जगा देना और किसी का हाथ मुश्किल समय में थाम लेना, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। जी तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो हमें जिंदगी का बेहद खूबसूरत और गहरा संदेश देता है कि अगर जीना है तो केवल अपने लिए नहीं कुछ पल दूसरों की खुशियों के लिए भी जीना सीखिए।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में जावेद अनवर का लिखा यह गीत अभी आपने सुना। बादल फिल्म से इस गीत को आवाज दी मन्ना डे ने। जी हाँ श्रोताओं, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है श्रोताओं, और ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखें और हमारे कर्म, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार ऐसा हो जिससे किसी का दिल ना दुखे। श्रोताओं, सुबह की नई रोशनी हमें सिर्फ एक नया दिन नहीं देती बल्कि हमें कुछ नया करने, अपने जीवन और अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा देने का भी एक मौका होता है। और अपनी सकारात्मक सोच में हम जब जागरूकता लेकर आते हैं तो अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति भी हम सचेत होते हैं। दुनिया में हर इंसान के कर्तव्यों के साथ कुछ मूलभूत अधिकार भी होते हैं जिनके बिना सम्मानजनक जीवन की कल्पना भी अधूरी है। इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा और मानवता की आवाज को मजबूत करने के देश से हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय एक वैश्विक मानवाधिकार संगठन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकार केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हर इंसान के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान से जुड़े हुए हैं। चाहे किसी भी देश, धर्म और भाषा का व्यक्ति हो, हर किसी को समान अधिकार मिलने चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में कैदियों की रिहाई, अन्याय के खिलाफ अभियान और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम करता है। ये दिवस हमें संवेदनशील बनाता है और समाज में न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। इसे साल 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज विशेष में श्रोताओं बात करते हैं आज के दिन जन्मी खास हस्तियों के बारे में। भारतीय राजनीतिज्ञ, जाने माने समाज सेवक और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक गोपाल रामानुजम, इनका जन्म साल 1915 में हुआ। साल 1921 में जन्म हुआ भारतीय राजनीतिज्ञ और गोरखनाथ मठ के भूतपूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ का। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डीवी पुलस्कर आज ही के दिन जन्मे, साल 1921 में इनका जन्म हुआ। साल 1923 में जन्म हुआ प्रसिद्ध अभिनेता और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एन टी रामाराव का। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, कला समीक्षक, अनुवादक और कहानीकार प्रयाग शुक्ल भी आज ही के दिन जन्मे, साल 1940 में। बात करें साल 1952 की तो भारत के प्रथम लोकपाल रहे पिनाकी चंद्र घोष इस साल में जन्मे आज के दिन यानी 28 मई के दिन। और 28 मई साल 1969 में जन्म हुआ भारतीय राजनीतिज्ञ प्रतिमा भौमिक का। श्रोताओ, आज ही के दिन जन्म हुआ है वी डी सावरकर जी का और इनके जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है श्रोताओं के मनोरंजन का और अब एक प्यारा सा गीत श्रोताओं को सुनवा रहे हैं बातें इस गीत के बाद।

आशा पारेख गुरुदत्त पर फिल्माया गया बाद भरोसा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना श्रोताओं। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा, रवि ने संगीत से सजाया और दिलकश आवाज इस गीत के लिए मोहम्मद रफी की। आकाशवाणी धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है और कार्यक्रम है सुप्रभात। आज विशेष की बात हम कर रहे थे श्रोताओं, आज का दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर विनायक दामोदर सावरकर का, जिनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन साल 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी विचारक, लेखक, कवि और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत जैसे संगठन से जुड़कर देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम बताया। उनके लेखन और विचारों ने अनेक युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई और सामाजिक सुधारों पर बल दिया। उनका जीवन संघर्ष, साहस और विचारों की दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है और उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन। कार्यक्रम सुप्रभात में श्रोताओं, आज विशेष में बात करते हैं उन खास हस्तियों की जिनके निधन आज के दिन हुए। साल 1954 में निधन हुआ महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का, जिन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय सिनेमा इतिहास के अग्रणी निर्माता निर्देशक महबूब खान, साल 1964 में 28 मई के दिन इनका निधन हुआ और 28 मई साल 2005 में निधन हुआ भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार और व्यंग्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे रमणीक स्थल की, और रमणीक स्थल में आज हम आपको सैर करवाएंगे बहुत ही खूबसूरत जगह धर्मकोट की, और पर्यावरण में जानकारी दी जाएगी बुलबुल पक्षी के बारे में। फिलहाल बातों को कुछ पल के लिए विराम लगाते हैं और आपका मनोरंजन करवाते हैं फिर से इस गीत के साथ।

कार्यक्रम सुप्रभात में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, सुबह का ये ताजगी भरा समय और सूरज की पड़ती हुई धरती पर ये किरणें पूरी धरती को अपनी सुनहरी आभा से ढक लेती हैं। हवा में ठंडक और मन में एक नई ऊर्जा का एहसास होता है, तो ऐसे में दिल खुद ब खुद कहीं दूर निकल जाने को करता है। शहर की भाग दौड़, ट्रैफिक की आवाजें और रोजमर्रा की थकान से हटकर अगर कुछ सुकून मिलता है तो वो मिलता है प्रकृति की गोद में बसे उन खूबसूरत और शांत स्थानों पर, जिन्हें हम कहते हैं किसी न किसी रमणीक स्थल का नाम हम देते हैं। और आज ऐसी ही जगह की सैर हम आपको करवा रहे हैं जो बेहद लोकप्रिय है अपनी शांति के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसा एक बेहद शांत और मनमोहक स्थान धर्मकोट। धर्मकोट एक छोटा सा लेकिन बेहद आकर्षक गांव है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। और ये प्रसिद्ध पर्यटन नगर धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज की ऊपरी पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो शहर की भागदौड़ से दूर कोई शांत स्वर्ग जैसा कोना मिल गया हो। धर्मकोट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, देवदार और चीड़ के घने जंगलों और बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां की सुबह बादलों से ढकी हुई और शामें सुनहरी रोशनी से जगमग होती हैं, जो हर किसी के दिल को छू लेती हैं। ये स्थान खासकर उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो शांति, योग, मेडिटेशन और प्रकृति के बीच सुकून की तलाश में आते हैं। यहाँ कई छोटे छोटे कैफे, योगा सेंटर्स और होम स्टे हैं और इस जगह को और भी खास ये चीज़ें बना देती हैं। धर्मकोट को कई लोग मिनी इसराइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक इसकी शांति और आध्यात्मिक वातावरण से बेहद प्रभावित होते हैं। अगर आप भी जीवन की भागदौड़ से कुछ पल दूर होकर खुद को प्रकृति के करीब महसूस करना चाहते हैं तो धर्मकोट आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये थी रमणीक स्थल धर्मकोट के बारे में जानकारी, जो सच में धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराता है।

फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुप्रभात। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे हैं श्रोताओं, और प्रकृति और मनुष्य की बात करें तो इनका रिश्ता बहुत ही गहरा और अनमोल है। पेड़, पहाड़, नदियां, हवा और आसमान, ये सब मिलकर हमारे जीवन को संतुलित और सुंदर बनाते हैं। लेकिन अगर इस सुंदर संसार में पक्षियों की चहचहाट ना हो तो सोचिए ये दुनिया कितनी सूनी और अधूरी लगने लगेगी। सुबह की पहली किरण के साथ जब पक्षियों की मधुर आवाज कानों में गूंजती है तो मन अपने आप ही तरोताजा हो जाता है। और ये पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता को नहीं बढ़ाते, शोभा को नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण संतुलन में भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन खूबसूरत पक्षियों की कतार में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे और मधुर स्वर वाले पक्षी बुलबुल के बारे में। बुलबुल एक छोटा सा सुंदर और आकर्षक पक्षी है जो अपनी मीठी और सुरमई आवाज के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर बाग, बगीचों, झाड़ियों और हरियाली वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसे इंग्लिश में बुलबुल ही कहा जाता है और इसकी सबसे आम भारतीय प्रजाति रेड वेंटेड बुलबुल यानी लाल पूंछ वाला बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइक्नोनोटस कैफर है। बुलबुल का शरीर हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी पूंछ अपेक्षाकृत लंबी होती है। इसके सिर पर हल्की कलगी जैसी आकृति दिखाई देती है जो इसे और भी अधिक सुंदर बनाती है। बुलबुल के मुख्य भोजन की बात करें तो फल, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे दाने इसकी आहार में शामिल हैं। ये पक्षी आमतौर पर जोड़ों में या छोटे समूहों में रहता है और अपने इलाके की रक्षा भी करता है। इसकी सबसे खास बात इसकी आवाज़ है जो बहुत ही मधुर और संगीत जैसी लगती है। इसीलिए कई कवियों और लेखकों ने भी बुलबुल की तुलना प्रेम और सुंदरता से की है। ये पक्षी पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि ये कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है। आइए हम सब मिलकर ऐसे सुंदर पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं ताकि हमारी धरती हमेशा हरी भरी और जीवंत बनी रहे।

तो श्रोताओं, ये था आज का सुप्रभात कार्यक्रम। और आज की सुरीली सुबह में आपके मन में हमने नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई उम्मीद और ढेरों मुस्कानें लाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं इस कोशिश पे हम खरे उतरे होंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आज का दिन ये शुभ बना रहे और आपका हर दिन आने वाला, हर पल आने वाला बेहद खुशियों से भरा हुआ हो, और अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी आप अच्छे से ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी दोस्त नीलम के साथ, और इस कार्यक्रम को आपके रेडियो सेट्स तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील शर्मा ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम धर्मशाला और कार्यक्रम आप सुन रहे थे अभी सुप्रभात और अब वक्त है कार्यक्रम शुभ ब्याग का।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप जुड़े हुए हैं और हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, लोकधुनों की मिठास और भक्ति की पवित्रता एक साथ घुल जाती है। ये लोकगीत यानी लोक भजन अभी आपने सुना, प्रताप चंद शर्मा और साथियों का गाया। कार्यक्रम में आप शामिल कर रहे हैं एक और लोकगीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है करनैल राणा ने।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। श्रोताओं, ये लोकगीत हमारी संस्कृति, हमारे लोक भजन, लोक धुने जो हैं, ये केवल संगीत नहीं है बल्कि हमारी परंपराओं, आस्था और जीवन की सरलता का एक बहुत ही सुंदर सा प्रतिबिंब है। इसमें कहीं खेतों की महक है, कहीं पहाड़ों की सादगी है, कहीं माँ बाप, गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, तो कहीं रिश्तों की खूबसूरती और आपसी प्यार और आपसी नोकझोंक का भी वर्णन किया जाता है। ऐसा ही एक प्यारा सा लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं। शकुंतला और साथियों ने आवाजें दी हैं इस गीत को।

श्रोताओं, इन्हीं लोक धुनों के साथ आज का ये कार्यक्रम शुभ्याग यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:55 हुए हैं। आप सुनिए ये देशभक्ति गीत।

ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। और श्रोताओं, यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। 8:30 से हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर, जिसमें आज बात होगी साल 1979 में बनी फिल्म सरगम की। और 9 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। फिलहाल आपको लिए चल रहे हैं हम कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहाँ से 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
5: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
6: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक

0: स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोलह क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नव निर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
3: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
4: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
5: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल रेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले

0: Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह के 8:30 हुए हैं और हाजिर हैं हम एक बार फिर आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। और आज इस समय आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत फिल्म सरगम के गीत। श्रोताओं, सरगम फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर का एक मधुर अध्याय है। एक ऐसी फिल्म जिसने संगीत की कहानी को ही अपनी आत्मा बना दिया। आज भी जब इस फिल्म के गीत बजते हैं तो पुरानी यादें, पुराने रेडियो और सुनहरे दिन फिर से एक बार लौट आते हैं, ऐसा अनुभव होता है।

श्रोताओ, साल 1979 में बनी फिल्म सरगम के गीत आज के इस कार्यक्रम में एक ही फिल्म के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओ, इस फिल्म का निर्देशन किया था प्रसिद्ध निर्देशक के विश्वनाथ ने और फिल्म के निर्माता थे NNCP। ये फिल्म मूल रूप से तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मुब्बा का हिंदी रूपांतरण थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए ऋषि कपूर, जया प्रदा, शक्ति कपूर और अरुणा ईरानी। इनके अलावा धीरज कुमार, लीला मिश्रा, जानकी दास, केस्टो मुखर्जी, श्रीराम लागू, त्रिलोक कपूर, ओम शिवपुरी, असरानी, विजय अरोरा और शशिकला ने भी इस फिल्म में भूमिकाएं निभाईं।

0: श्रोताओ, बेहद मधुर और सुरीला गीत जिसमें प्रकृति, प्रेम और संगीत तीनों का सुंदर मेल दिखाई दिया। और श्रोताओ, सरगम फिल्म के गीत ऐसे गीत जो जब भी सुने जाएं एकदम नए से लगते हैं। सरगम फिल्म साल 1979 में बनी ये फिल्म और इस फिल्म के गीत आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं। और आकाशवाणी धर्मशाला से श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं ने इसे ट्यून किया है। कार्यक्रम में एक वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही फिल्म से में फिर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, फिल्म सरगम का छायांकन KH कपाड़िया ने किया और संपादन वामन भोसले और गुरुदत्त शिराली ने किया। 8 जनवरी साल 1979 को ये फिल्म रिलीज हुई। और बात करें श्रोताओं उस चीज की जिसने सरगम फिल्म को अमर बना दिया, वो था इसका संगीत। फिल्म का संगीत दिया महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म के खूबसूरत से गीत लिखे प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी ने। दोस्तों, इस गीत की भावनात्मक गहराई आज भी दिल को छू जाती है। विरह और बिछड़ने का एहसास जो इस गीत में जिस खूबसूरती से पिरोया गया है वो बाकमाल है।

0: श्रोताओ, फिल्म सरगम में ऋषि कपूर और जयप्रदा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और खास बात ये रही, जयप्रदा की ये शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान दिलाई। कार्यक्रम में वक्त है एक बार फिर ब्रेक का।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
2: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
2: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ इस समय आप बने हुए हैं और यह कार्यक्रम है एक ही फिल्म से। साल 1979 में बनी फिल्म सरगम के गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रोता, इस फिल्म की कुल समय अवधि की बात करें तो लगभग 2 घंटे 25 मिनट की ये फिल्म रही और फिल्म का संगीत एल्बम उस समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम बना था। रेडियो सिलोन से लेकर विविध भारती तक इसके गीत लगातार श्रोताओं की पसंद बने रहे और इस फिल्म के गीतों की समय अवधि की बात करें तो लगभग 41 मिनट समय अवधि के गीत इस फिल्म में शामिल हैं और गीतों के लिए आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

की फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से और साल 1979 में बनी फिल्म सरगम के गीत आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म श्रोताओं, ये फिल्म जो है ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और फिल्म सुहाग और जाने दुश्मन के बाद तीसरे स्थान पर ये फिल्म रही। जयप्रदा ने, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस फिल्म में अभिनय किया और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना पहला फिल्मफेयर नामांकन भी इसी फिल्म से मिला। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म का बहुत ही एक प्रसिद्ध गीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज़ें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म थी साल 79 में बनी फिल्म सरगम। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 9 बजे हैं सुबह के और हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। फिल्मी गीतों के आज के सफर में सभी श्रोताओं का स्वागत, और आज का ये सफर आप तय करने जा रहे हैं मेरे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें कभी नहीं होती कम। जी हां, और बातें कम हो भी क्यों, बातें करने के लिए और गीत सुनाने के लिए ही हम आपके पास इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मिलने के लिए आते हैं। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है श्रोताओं, और आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप सोच नहीं सकते हैं अभी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत से आपका एंटरटेनमेंट शुरू कर रहे हैं, और बाकी की बातें इस गीत के बाद। सोचिए वो कौन सा इंसान होगा जिससे आज आपकी मुलाकात करवाई जाएगी।

0: जी हाँ, रुकिए तो और सुनिए तो। जी बिल्कुल सुनिए, आज की मुलाकात किस शख्स से होने जा रही है। दोस्तों, दुनिया की इस भीड़ में हर रोज हम कितने चेहरों से मिलते हैं, कितने इंसानों से मिलते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है, एक शख्स ऐसा भी है जिससे मुलाकात हमेशा अधूरी रह जाती है। एक ऐसा चेहरा जिसे हर रोज हम देखते हैं लेकिन उसे शायद पढ़ नहीं पाते, उससे बातें नहीं कर पाते। और एक ऐसा मन जिसका हाल हम सुन नहीं पाते, या यूं कहिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसकी बातें सुन सकें, समझ सकें। औरों के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, लेकिन उस शख्स के लिए वक्त नहीं। चलिए सस्पेंस अब खत्म करते हैं और बताते हैं वो शख्स कौन है। जी हाँ, वो शख्स है हम खुद। अपनी बात हम कर रहे हैं खुद से, एक मुलाकात आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। आज की इस महफिल में बात होगी सेल्फ लव की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, उन खामोश पलों की जहां हम अक्सर अकेले होते हैं लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत भी। तो आज का ये सफर, आज की ये मुलाकात खुद से आप तय करेंगे। अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी हूं मैं नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कभी कम। बातें कम होंगी तो अपने दिल की बातें आपसे कैसे शेयर करेंगे। फिलहाल गीत सुनिए और बाकी बातें इस गीत के बाद जारी रहेंगे।
1: Bellissimo.

जी हाँ दोस्तों, ये कुड़ी बेशक अनजानी हो सकती है, लेकिन ये जो कुड़ी बातें कर रही है ये आपकी जानी पहचानी है। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम, और बातें कम हम करेंगे ही भी नहीं श्रोताओं। और दुनिया में बहुत हैं गम, लेकिन इन सब गमों के बाद भी हम अपनों के साथ रहते हैं, अपनों के साथ मुस्कुराते हैं और खुद को भूल जाते हैं। कभी कभी अकेले सफ़र पर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, खुद तक ले जाते हैं। जहाँ कोई शोर नहीं होता, सिर्फ दिल की आवाज़ होती है, और वही आवाज़ हमें बताती है कि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। और अब आप फील कीजिए इस गीत को, क्योंकि बातों के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत ही जरूरी है।

जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप एंजॉय कर रहे हैं। आकाशवाणी धर्मशाला से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। बाकी के गीत, बाकी की बातें होंगी प्रादेशिक समाचारों के बाद। फिलहाल प्रादेशिक समाचारों का वक्त हो रहा है और कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी शिमला के स्टूडियोज, जहाँ से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:20 पर।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार।

0: प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के दूसरे चरण का मतदान आज जारी, 1276 पंचायतों में हो रहा चुनाव। तापमान बढ़ने से प्रदेश के जंगलों में बढ़ी आग की घटनाएं, अब तक जंगलों में आग के 232 मामलों में 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोट चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख, रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 2276 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के आज कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से है, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में है। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। आज देश सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ईद उल अजहा पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। सुबह से ही मस्जिदों में और ईदगाहों में विशेष नमाज अता की जा रही है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने मंगल कामना करते हुए कहा है कि ये त्यौहार समाज को सद्भाव, एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें करीब 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67,00,000 रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी जिले में देखा गया है, जहाँ 85 मामले सामने आए हैं।
1: पूरे स्टेट में 232 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, छोटे बड़े मिला तो लगभग 2900 हेक्टेयर छोटा बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और जो उसमें टोटल जो हमने नुकसान आज तक कभी असेस किया वो 67,00,000 रुपीज़ का है। इंसिडेंट्स की बात है तो सबसे आगे इस समय मंडी में ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, 85 केसेज वहाँ के हैं। तो इस समय भी हमने करीब 2000 बीट्स में अपने लोग डिप्लॉय कर रखे हैं। हमारे करीब 10 से 12 ड्रोन्स हैं, उनमें भी हम मदद ले रहे हैं। तो हम ड्रोन्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, तो ड्रोन से भी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट हमारे लिए अब थोड़ा आसान रहेगा। फायर लाइंस होती हैं हमारी, वो भी हमने काफ़ी अपनी मेंटेन की। तो 3000 किलोमीटर्स की जो फॉरेस्ट फायर लाइंस हैं उसको हमने मेंटेन किया। जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है और हम आगे आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा।
0: जनगणना प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोट चढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश सहित पंजाब और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि नई फसल बाबा को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में गत रविवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पंजाब हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने नई फसल का रोट चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रखे। कई श्रद्धालु परिवार सहित शाहतलाई से पैदल यात्रा कर द्योर सिद्ध पहुंचे। मान्यता है कि नई फसल बाबा को चढ़ाने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा। दिन भर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का माहौल बना रहा और श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे रहे। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर द नेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण के तहत ऊना जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अदालतों में चल रहे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश इस अभियान में की जा रही है, जिससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, संपत्ति विभाजन, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता मामलों जैसे सुलह योग्य विवादों को प्राथमिकता दी जा रही है। देश से मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। गर्मियों में पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही शिमला में पर्यटन कारोबारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि रोजाना 20,000 से अधिक वाहन पहुंचने से शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को चारू बनाए रखने के लिए शहर में 32 ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, नगर निकाय के नव निर्वाचित पार्षदों की 8 जून से पहले होगी शपथ। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, प्रदेश में 1279 पंचायतों के दूसरे चरण का मतदान आज, 11,000 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। पंजाब केसरी की खबर है, दूसरे चरण में आज हिमाचल की 1279 ग्राम पंचायतों में वोटिंग। नेरवा में छात्रों के तीखे सवाल, मुख्यमंत्री सुखू के बेबाक जवाब, दिव्य हिमाचल की एक खबर है। इसी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, छात्रों ने सीएम से पूछा MLA के लिए परीक्षा क्यों नहीं। पत्र को अन्य खबर है, गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग सख्त, उपायुक्त को चेतावनी, दूसरे चरण में ना दोहराई जाए गलतियां। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, आज और कल बारिश, ओलावृष्टि की संभावना, प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी, 1276 पंचायतों में हो रहा चुनाव। तापमान बढ़ने से प्रदेश के जंगलों में बड़ी आग की घटनाएं, अब तक जंगलों में आग के 232 मामलों में 2,900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोट चढ़ाने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने किया शिमला का रुख, रोजाना पहुंच रहे 20,000 से अधिक वाहन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: वन जीरो 3.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और कार्यक्रम गीतांजलि लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम। और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कभी कम और जिसकी बातों में होता है दम। जी हाँ श्रोता, और आज की बातें तो बेहद खास हैं। आज कार्यक्रम में मुलाकात हो रही है हमारी खुद से, खुद से एक मुलाकात है आज कार्यक्रम में। और दोस्तों, हर इंसान कभी ना कभी खुद से ये सवाल तो जरूर करता है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है और आखिर मेरी मंजिल क्या है। तो इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें क्या करना होता है? जी, हमें ये जवाब तलाशना होता है खुद में, और उसके लिए बेहद जरूरी है अपने साथ एक छोटी मोटी मुलाकात और अपने साथ एक छोटा सा सफर तय करने की। फिलहाल फिल्म संगीत के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और एक गीत आपको और सुनवाते हैं। इस गीत को एंजॉय कीजिए, उसके बाद बाकी की बातें।

0: दोस्तों, ये लाइफ बहुत छोटी सी है और ना जाने कब इस जिंदगी पर फुल स्टॉप लग जाए। जिंदगी पर फुल स्टॉप लगे उससे पहले ये धोखे, ये चालाकियां हमें किसी के साथ भी नहीं करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने साथ तो बिल्कुल भी नहीं। खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला कीजिए, फोन से दूर, दुनिया के शोर शराबे से दूर, बस अपने साथ बैठिए। क्योंकि अपने साथ जब सुकून भरे पलों में आप बैठोगे तो वो बातें सुनाई देंगी, वो ख्वाहिशें सुनाई देंगी जो अक्सर दब जाती हैं शोर शराबे में, और इस सुकून की घड़ी में उन्हें आप अच्छे से सुन पाएंगे, खुद को अच्छे से समझ पाएंगे। कार्यक्रम में आगे एक गीत आपको और सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹199 डाउन पेमेंट एंड ₹199 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
3: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
4: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
6: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
3: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: प्रोग्राम गीतांजलि का नेक्स्ट ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।
5: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैच टच। छे यार, जिस लड़की को पटा देगा वही फोन पर नहीं आती यार।
4: सुनिए इस ट्रैक को और साथ में झूम लीजिए, जिंदगी की टेंशन को कुछ पल के लिए भूल जाइए।

जी दोस्तों, दिल का कोई मोबाइल नंबर नहीं है, सच कोई एड्रेस भी नहीं। आपको अपने दिल तक पहुंचने के लिए खुद ही राह बनानी है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से मुलाकात कीजिए, खुद से एक मुलाकात आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी करवा रहे हैं। और श्रोताओं, खुद से मुलाकात जब होती है तो हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं, और अपने लिए जब जीना शुरू करते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है कई बार। और जब खुद के लिए जिए और लोगों को दिक्कत हो तो बस वो बात याद रखें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की परवाह मत कीजिए, आगे बढ़िए, खुद के लिए जीना शुरू कीजिए। जो आपकी ख्वाहिशें, जो आपके शौक दबे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। और कोई और आपके साथ हो ना हो, हम तो आपके साथ हैं आकाशवाणी धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त के साथ, जो है नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। और फिल्म संगीत की भी कोई कमी नहीं, एंटरटेनमेंट आपका हो रहा है।

0: सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
1: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
1: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 9:53 और 25 सेकंड। खुद से मुलाकात हो रही है आज के गीतांजलि कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम, जिसकी बातें नहीं होती कम। दोस्तों, खुद से मुलाकात जब हम करते हैं तो हमारा सामना होता है खुद के डर के साथ, खुद की सच्चाई के साथ, खुद की कमियों के साथ। और जब हम ये सब एक्सेप्ट करते हैं, खुद की सच्चाई, खुद के कमियां और खुद के डर को, और उन पर काम करना शुरू करते हैं, तो निखर कर आता है अपना एक अलग रूप, सामने आता है हमारा एक नया और पॉजिटिव वर्जन। लोग क्या कहते हैं इस उनकी इस राय का हम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपने आप के साथ आगे बढ़ना है, खुद को सुधार करना है और एक अपना अच्छा सा रूप लेकर आगे चलना है, जिससे ना तो किसी को दुख हो, ना किसी का हम दिल दुखा सकें, और काम हमारे ऐसे हों, हमारी बोलचाल ऐसी हो जिससे सब लोग हमसे इम्प्रेस हों, और हम कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचें। तो अपने दिल को जो है बिल्कुल साफ कर लीजिए, और अपने दिल के साथ गुनगुनाते हुए गाते हुए आगे बढ़िए कुछ इस गीत के साथ।

दोस्तों, चलते चलते कुछ बातें और। कभी आप बिना वजह हंसे हैं, कभी अकेले कमरे में डांस किया है, कभी रास्ते में अचानक चलते ही अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाया है। बस यही वो पल हैं जो खुद से मुलाकात करने वाले होते हैं, जहां ना कोई दिखावा होता है, ना किसी के इम्प्रेशन की टेंशन कि हम किसी को क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं, और बस बात होती है तब अपनी खुद की वाइब से। तो आज का ये कार्यक्रम हमने सुना और खुद से आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश की। और खुद से ये मुलाकात जो है श्रोताओं, इसकी कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सफ़र है जो उम्र भर चलता है। हर दिन हम खुद से थोड़ा और मिलते हैं, खुद को थोड़ा और समझते हैं और खुद को थोड़ा और अपनाते हैं। तो हमने भी आज कोशिश की कि आपको आपसे मिलवाया जाए, आपसे आपकी मुलाकात करवाई जाए, और उम्मीद करते हैं आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे नीलम के साथ आज का ये कार्यक्रम आपने सुना। कार्यक्रम आप तक पहुंचा तकनीकी सहायक सुनील शर्मा के तकनीकी सहयोग से, और जितेंद्र पाल सिंह ने इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं श्रोताओं, और हाजिर हैं हम फिल्म संगीत लेकर। आज की सुबह में फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं।

तो उसमें निगाहें भी खूब असर करती हैं। कभी निगाहों ही निगाहों में बातें हो जाती हैं, तो कभी ये निगाहें दिल चुरा लेती हैं।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास बोलने लगते हैं, और उन्हीं खूबसूरत एहसासों से पहचान होती है मोहब्बत की। मोहब्बत जो कहने से नहीं, सिर्फ दिल की धड़कनों से महसूस होती है। मोहब्बत एक जज्बा, जहां बात दिल से होती है कि तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम ही मेरी पहचान।

0: फिल्म संगीत के सुहाने से सफर में कुछ पलों के लिए हम रुकेंगे।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म संगीत के इस खूबसूरत से सफर में आप बने हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है इसे और बात करें श्रोताओं आगे कार्यक्रम में, तो जिंदगी कभी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां दिल इंसानों से नहीं बल्कि एहसासों से बातें करने लगता है। और जब दिल बातें करने लगता है तो वो हर गुलशन को, हर फूल को, हर हवा को अपनी कहानी सुनाने लगता है, बिल्कुल कुछ इस गीत की तरह।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, फिल्म संगीत के आज के इस सफर में आप हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ बने हुए। दोस्तों, कभी कभी सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता बल्कि दिलों के मिलने का भी होता है। और जब रास्ते हंसी वादियों से होकर गुजरते हैं और हर मोड़ पर एक कहानी जन्म लेती है, तब ये गीत हमें ले चलता है एक ऐसे ही खूबसूरत दुनिया में जहाँ हवा भी धीमे धीमे कुछ कहती है और पहाड़ भी जैसे मुस्कुरा उठते हैं। ये वो पल होते हैं जहाँ दो लोग मिलते हैं और वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस एक सुकून और दिल की धड़कनों की आवाज़। और उन्हीं हसीन वादियों के बीच प्यार धीरे धीरे अपना रंग बिखेरता है। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र को महसूस कीजिए जहाँ हर कदम पर मोहब्बत साथ चलती है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिमाचली गीत और लोकगीत। लोकगीत के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ माया। पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं लीला भंडारी की आवाज में।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: हिमाचली गीत और लोक गीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला लोक गीत सुनिए ओम प्रकाश व साथी की आवाजों में।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: हिमाचली गीत और लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं करनैल राणा व लेहरू राम सांख्यान की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीत और लोकगीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1276 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में आज कुल 17,30,030 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक करीब 4,00,000 मतदाता कांगड़ा जिला से है, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में है। इस बीच 30 मई को तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे

0: खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। इस बीच आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
1: मेरा नाम आरती है, मैं गांव मालोवाला की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रहने वाली हूं। आज मैंने पंचायती चुनाव में अपना पहला वोट दिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आप सभी भी अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
2: मेरा नाम सदस्या है, मैं गांव बंथिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूं। आज मैंने अपना अधिकार पूरा किया है वोट डालकर और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट डालकर अपना अधिकार पूरा किया है।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान के बीच जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। प्रदेश के वन विभाग प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अब तक राज्य में जंगलों में आग लगने के 232 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से करीब 2900 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 67 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। संजय सूद ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभाव मंडी जिले में देखा गया है, जहाँ 85 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों के कानूनी विवादों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मेडिटेशन फॉर द नेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण के तहत ऊना जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्राधिकरण की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अदालतों में चल रहे मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश इस अभियान में की जा रही है, जिससे समय और धन की बचत के साथ ही आपसी संबंधों को भी बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, संपत्ति विभाजन, भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता मामलों जैसे सुलह योग्य विवादों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमीरपुर जिला के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर द्योट सिद्ध में नई फसल का रोड चढ़ाने के लिए इन दिनों प्रदेश सहित पंजाब और हरियाणा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि नई फसल बाबा को अर्पित करने से घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि बनी रहती है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा पूरी तरह मुस्तैद है और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। देश से मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में सैलानियों ने शिमला का रुख किया है। गर्मियों के पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही शिमला में पर्यटन कारोबारियों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में 24 दिनों में करीब 6,31,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि रोजाना 20,000 से अधिक वाहन पहुंचने से शहर में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए शहर को 5 सेक्टरों में बांटकर विस्तृत ट्रैफिक योजना तैयार की गई है। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर में 32 ट्रैफिक राइडर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
4: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर अभिषी प्रस्तुत है कुछ पंजाबी गीत। शुरुआत कर रहे हैं इस पंजाबी गीत के साथ, जिसे गाया है हंसराज हंस ने।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं पंजाबी गीत, जहां हर गीत किसी अधूरी मोहब्बत, अधूरे इंतजार और किसी खामोश दर्द की कहानी कह रहा है। लेकिन शायद संगीत की यही खूबसूरती है, ये टूटे हुए दिल को भी धीरे धीरे संभलना सिखा देता है।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और पंजाबी गीतों का लुत्फ आप उठा रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में बहुत करीब आकर भी हमेशा के लिए साथ नहीं रह पाते। रास्ते अलग हो जाते हैं, मगर यादें कभी जुदा नहीं होती। दिल बार बार वही पल ढूंढता है जब साथ था, बातें थी और रिश्तों में दूरी का नाम तक नहीं था। अब ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जो बिछड़ने के दर्द और अधूरी मोहब्बत की खामोशी को बेहद खूबसूरती से बयां कर रहा है। इस गीत को गाया है प्रभ गिल ने।

श्रोताओं, बहुत ही दर्द से भरा ये पंजाबी गीत, और कुछ एक श्रोता ऐसे होंगे जो इस गीत को सुनकर जिनकी आंखों में आंसू भी आ गए होंगे। पंजाबी गीतों में एक अलग ही गहराई होती है। कभी कभी इंतजार इतना लंबा लगता है कि हर आहट में उसे इंसान की आवाज़ सुनाई देती है। दिल बस यही चाहता है कि वो सामने आ जाए और सारी दूरियां एक पल में ख़त्म हो जाएं। मोहब्बत किसी प्यारी सी बेचैनी और मिलने की तड़प को महसूस कराता है ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी गीत। तो आइए दिल के एहसासों के साथ सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, आंखों का भी अपना एक अलग रिश्ता है। कभी ये चुपचाप मोहब्बत बयां कर देती हैं तो कभी किसी की याद में नम भी हो जाती हैं। और जब किसी की नज़र दिल पर असर कर जाए तो फिर हर धड़कन में उसी का नाम सुनाई देता है। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत पंजाबी गीत जो नैनो की इन्हीं अनकही बातों को सुरों से सजाता है। गुरु रंधावा और कपिल शर्मा ने इस गीत को गाया है।

श्रोताओ, अभी आप लुत्फ उठा रहे थे पंजाबी गीतों का। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं और 11:30 का वक्त अब आपको सुनवा रहे हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की अगली कड़ी।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं अब इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
3: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
2: जी। मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
2: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
3: जी।
2: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
3: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
2: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
3: भला वो और क्या बात है?
2: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है
3: जी। ये बात तो है।
2: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
3: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है
2: जी।
3: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है
2: जी।
3: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है
2: जी। अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम

0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
1: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
6: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
5: तो कोई बड़ा है घर में?
6: हाँ, घर पर माता जी है ना।
5: जी बुलाइए।
7: माँ।
3: हाँ।
7: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
5: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम।

0: ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
1: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
2: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
1: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
2: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
1: हाँ।
2: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं एक महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
3: अरे वाह,
1: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
3: ऐसे नहीं,
4: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
2: अरे योगेंद्र।
1: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
2: हाँ माँ।
3: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
1: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
3: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
0: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
5: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।
0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
5: अब युद्ध अवश्यम्भावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी, क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी।
5: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की

0: दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
1: जी साहब, जी साहब।
0: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
1: चलो साथियों।
2: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
2: कालिका माता की जय।
1: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं।

0: दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
0: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर।

सैनिक भाई और बहनों, जय हिंद। कार्यक्रम सैनिकों के लिए में आप सभी का स्वागत है। ना कोई डर, ना कोई थकान, बस देशभक्ति की धुन में रहते हैं सीमा पर खड़े वो वीर बहादुर। हर पल दुश्मन से कहते हैं, मां भारती की आन नहीं कभी भी झुकने देंगे हम। खुद मिट जाएंगे पर बढ़ते कदम न रुकने देंगे हम। इनकी बहादुरी की कहानी हर दिल में बस जाती है। इन वीरों के इस जज्बे से ही ये धरती मुस्काती है। और ये गीत बयां करता है हमारे वीर बहादुरों के दिल की दास्तां।

0: चाइना गेट फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। सोनू निगम, हरिहरन, विनोद राठौर की आवाजें, संगीत अनु मलिक का और बोल समीर के।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं माँ फिल्म से। ये गीत हमने लिया है, अनु मलिक ने इसे संगीत से सजाया है, गीत लिखा है देव कोहली ने और इस गीत को आवाज दी पूर्णिमा ने।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं और श्रोताओं 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप बने हुए हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम में आप अगला गीत सैनिक भाइयों बहनों के लिए लेकर आ रहे हैं। सौतन फिल्म का ये गीत है। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में सावन कुमार ने इसे लिखा। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं इस गीत में।

0: है ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: सौतन फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना श्रोताओं, लता मंगेशकर किशोर कुमार के युगल स्वरों में। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुँच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से आप इस समय जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। सैनिक भाइयों बहनों, कार्यक्रम में

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत। बप्पी लाहिड़ी ने इसे अपने संगीत से सजाया है। अनजान ने इस गीत को लिखा। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्यारी बहनों के लिए कार्यक्रम मिंजरा।

स्वागत सारे श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। पैणो अज्ज दे इस कार्यक्रम विच असां तुहाडे कन्ने तो सदी अपनी रेडियो सखी माया सारियां श्रोता सखियां जो साडी धरती ते प्यार भरी राम राम। पैणो दिखा हर इंसान दे अंदर कोई ना कोई विशेष गुण या हुनर जिहड़ा से जरूर छुपिया हुंदा। कुसी दे अंदर संगीत दा कौशल हुंदा, कुसी दे अंदर खेलां च रुचि हुंदी, कुसी कुसी जो लिखणा खरा लगदा उहनां का शब्दां दी जिहड़ी असीं भरमार हुंदी, कुसी दे अंदर चित्रकला विज्ञान ते कुसी दे अंदर नेतृत्व दी क्षमता हुंदी। पर कई वारी ऐसा मनु अपने अंदर छुपियो हुनर जो जिहड़ा से खरे तरीके कन्ने पहचानी नहीं पांदे ते इस दी वजह कन्ने अस अपने जीणे च अगे जिहड़ा से बिल्कुल नहीं बधी पांदे ते कई मौके आंदे हत्थे का जिहड़े इनसे निकली जांदे। असा चाही करी भी कुछ अपने वास्ते नहीं करी पांदे। इस खातिर अगर असा जो अपने जीणे च अगे बधना है ते अपने हुनर जो पहले पहचानना जिहड़ा सा बड़ा जरूरी है ताकि अस जो पता चले कि असा कुछ कम जो आसानी कन्नै करी सकदे। असा दा हुनर ही असा जो सफलता आत्मविश्वास ते सम्मान दिलाने च मदद करदा। तां अगे असा होर भी जानकारी जिहड़ी तुसां कन्नै सांझा करनी है पर पहले सुन लैंदे इक प्यारा जिहा लोक गीत।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: लोकगीत ते संदेश का बाद एक बार फिर स्वागत है सभी श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च।

असा दे अंदर जिहड़ी भी कला है सै साड़ी सभना का बड़ी ताकत हुंदी है। जिहड़े माणू अपने अंदर छुपे हुनर जो कौशल जो समझी लैंदे पछाणी लैंदे से अपने जीने दे लक्ष्य जो आसानी कन्नै पाई लैंदे। हुनर सिर्फ नौकरी या व्यवसाय च ही नहीं बल्कि जीने दे हर क्षेत्र च असा जो जड़ा सै मदद करदा। इस वास्ते अज दे समें च पढ़ाई दे कन्नै कन्नै कला दा होना जड़ा सै भी बड़ा जरूरी है। अपने अंदर छुपी कला जो जानने वास्ते असा जो अपनी रुचि ते क्षमताएं पर ध्यान देना हुंदा है कि असा जो कौन दिया काम जड़ा से करना खरा लगदा, कुछ काम जो करने वास्ते असा जो खुशी मिलदी ते थकान महसूस असा जो बिल्कुल नहीं हुंदी। असा बड़े चाए चाए कन्ने से काम करदे, ओही काम असा दी असली ताकत असली जड़ी से कला हुंदी। इस दे अलावा भी नई नई चीज़ां सीखने दी असा जो कोशिश करनी चाहिदी, कोशिश करी सकदे असा ते कन्ने कन्ने अपनी कमजोरियां जो ते खूबियां जो भी समझना जरूरी है। कोई भी काम करना हो व्यवसाय के रूप में मनी लिया, अगर कुसी की सलाह लेने की जरूरत हो तो जरूर जी असें सलाह लेनी चाहिए, तो अस अपने परिवार वाले दी, अपनी सखी सहेलियां दी, अपने शिक्षकों दी भी सलाह ले सकते जड़े असा दा पला चाहने वाले होन। ते अगर कोई काम शुरू करना हो तो पहले प्रशिक्षण लेना जड़ा से जरूरी होंदा, फिर ही लगातार अभ्यास ते मेहनत ता हर काम जो करने वास्ते असा सबना जो करना ही पौंदी, ता ही असा उस काम जो आसानी कन्ने करी सकदे ते व्यवसाय दे रूप च जड़े से अगे बधाई सकदे। पर हुनर जो निखारने वास्ते मेहनत दे कन्ने कन्ने आत्मविश्वास भी जड़ा से बड़ा जरूरी है। बार बार अभ्यास करने कन्ने असा दी कला च होर भी ज़्यादा जड़ा से निखार होंदा। अज जितने भी सफल लोग हैं से सारे अपनी मेहनत कन्ने ही अगे बधे हैं, अपने जीने च सफल होए हैं। अगर असा सारे अपने हुनर च विश्वास रखन ते लगातार प्रयास करन तो बड़ी का बड़ी सफलता भी जड़ी से हासिल करी सकदे। इस खातिर अपने हुनर जो पहचानी करी असा जीवन च आगे बधी सकदे, क्योंकि हर मनु दे अंदर दिखा कोई ना कोई गुण जरूर हुंदा। जरूरत हुंदी वक्त पर उसको पहचानने दी, समझने दी ते कोई नई दिशा देने दी उस काम जो। जैलू असा अपनी कला जो पहचानी करी मेहनत कर दे तो असा देश दे समाज दी प्रगति जड़ा से अपना योगदान दिंदे। इस खातिर अपनी प्रतिभा जो पहचानी करी उसको निखारने दी असा जड़ी से जरूर कोशिश करी सकते। तो अगे असा होर भी जड़ी से तुसा कन्नै गल्लां लानी है ना, पर फिर सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

एक बारी फिर स्वागत है सदेश होता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरा च। अपना काम करने दे कन्ने कन्ने पैणो असा जो हर क्षेत्र च जागरूक रहना जिहड़ा से बड़ा जरूरी है। अज दा जमाना जिहड़ा से जागरूकता दा युग है। समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक ते राजनीति, इहदे हर क्षेत्र च जागरूकता दा जिहड़ा से बड़ा महत्व है। अगर असा जागरूक होंगे, अपने अधिकारां जो खरी करने जिहड़े से समझदे होंगे, अपने कर्तव्यां दी भी आ जो पूरी जानकारी होंगी, तो दिखा समाज च भी ऐसा जिहड़ा से तां ही अपना पूरा योगदान दे सकदे, क्योंकि ऐसा महिलाएं दी जागरूकता जिहड़ी से इस कन्ने देसे दी प्रगति च भी योगदान हुंदा। असा जो शिक्षा दे क्षेत्र च जागरूक रहना जरूरी है, स्वास्थ्य दे क्षेत्र च जागरूकता जरूरी है, पर्यावरण दे क्षेत्र च जागरूक होना जिहड़ा से सभना का ज़्यादा जरूरी है, तकनीक ते सामाजिक क्षेत्र च जागरूक होना जरूरी है। यानी हर क्षेत्र दी जागरूकता समाज ते राष्ट्र दी प्रगति वास्ते जिहड़ी से जरूरी है। एक जागरूक महिला अपने आप भी अगे बधदी ते दूजा जो भी प्रेरित करदी। इस खातिर असा सभना जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण ते सामाजिक जिम्मेदारियां दे प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिदा। तकनीक दी जानकारी कन्ने दिखा सा इंटरनेट ते मोबाइल दे माध्यम कन्ने देसे दी दुनिया दी जानकारी जिहड़ी है हासिल करी सकदे, ते अज असा महिलाएं भी शिक्षा, रोजगार ते आत्मनिर्भरता दे क्षेत्र च जागरूक होई करी अगे जिहड़ी है से वधा करदे हन, ते समाज च समानता ते अधिकारां दे प्रति भी अज जागरूकता जिहड़ी है से असा दे अंदर वधा करदी है। पर्यावरण संरक्षण भी अज एक बड़ी वड्डी जिहड़ी है से जरूरत बनी चुकिया है। महिलाएं अज पेड़ पौधे लगाने, पानी बचाने ते प्लास्टिक दा उपयोग जिहड़ा है से घट करने वास्ते अगे आवा करदी हन। पर्यावरण के प्रति जागरूकता कन्ने ही प्रकृति की रक्षा जिहड़ी है से संभव है। इस कन्ने ही आने वाली पीढ़ी जो स्वच्छ वातावरण जिहड़ा से मिली सकदा, ते अज स्वास्थ्य के क्षेत्र च भी महिलाएं की जागरूकता जिहड़ी है से वधा करदी है। अज महिलाएं स्वच्छता, पौष्टिक खाना ते नियमित व्यायाम के महत्व जो जिहड़ा से समझा करदी हन, ते इसी जागरूकता की वजह कन्ने कई बीमारियां पर जिहड़ी है से रोक लगाने वास्ते मदद मिला करदी है। अज महिलाएं शिक्षा दे क्षेत्र च जागरूक हैं। अज हर माता पिता अपने न्याणियों जो अच्छी का अच्छी शिक्षा दवाने वास्ते जड़े हैं से प्रयास करा करते हैं, ते शिक्षा दे प्रति जागरूकता जड़ी से समाज च अंधविश्वास ते रूढ़िवाद का लोग जड़े से इस वजह कन्ने दूर हटते हैं। इस खातिर हर क्षेत्र च जागरूकता की वजह कन्ने ही असा अगे जड़ा से बधी सकते, तरक्की करी सकते, क्योंकि जागरूकता ही हर क्षेत्र च जड़ी से विकसित ते मजबूत समाज की जड़ी से पहचान है। तो यह तो गल हुई मतलब कि हर क्षेत्र च जागरूक रहने की। हुण असा गल करनी है अनाज भंडारण के बारे च। आलू असा दे देशे प्रदेशे दी दिखा प्रमुख सब्जियां च जड़ा से मन्नी जांदी है। इसका इस्तेमाल लगभग हर घरे च कीता जांदा है। आलू दी सब्जी हर मौसम च यानी 12 महीने खाई जांदी है। इस वजह कन्ने इसो लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने वास्ते इसका सही भंडारण करना जड़ा से बड़ा जरूरी है। अगर सही तरीके कन्ने आलू दा भंडारण नहीं कीता जाए तस्ता भी जड़ा से आलू खराब हो जांदा। इसते सही भंडारण दा मुख्य उद्देश्य जड़ा से आलू जो सड़ने का, अंकुरित होने का यानी कि लुंगड़े का बचाना है। आलू जो मिट्टी का निकालने का बाद साफ करके सुखी जगह च रखी करी सुखाना जरूरी है। सही भंडारण करने कन्ने किसान पाई पैना जो आर्थिक लाभ मिलता, तो आलू जो हमेशा सुखी ठंडी ते हवादार जगह पर जड़े से रखना होंदा है। अजकल बड़े स्तर पर दिखा आलूआं दा भंडारण करने वास्ते ठंडे गोदामा दा इस्तेमाल जड़े से कीता जांदा है। इस च तापमान नियंत्रित रहिंदा ते आलू लंबे वक्त तक सुरक्षित रहिंदा। भंडारण करने का पहले खराब दे कटे हुए आलू जड़े इनसे अलग कर देने चाहिए। अगर सड़े हुए आलू खरे आलू दे कन्ने जड़े इनसे मतलब रखड़े होन तो खरे आलू जड़े इनसे भी खराब हो जाते। आलू जो नमी का बचाना होंदा है, क्योंकि ज़्यादा नमी कन्ने उली फफूंदी जड़ी से लगी जाती है आलू च। इसका सही भंडारण किसानों ते व्यापारियों दोनों वास्ते लाभदायक है। इस कन्ने खाद्य पदार्थों की बर्बादी जड़ी से घट होंगी, ते मनुआ जो पूरे साल भर आलू खाने जो जड़ा से मिलता रहता। इस खातिर वैज्ञानिक ते सुरक्षित तरीके कन्ने आलू दा भंडारण जड़ा से करना जरूरी है। तो गल्ला असा होर भी करनी है, इन अगे होर भी जानकारी जड़ी से

एक बारी फिर इस भागवत असदिया श्रोता सखियां का कार्यक्रम मिंजरां च पहलों असा गल बात करनी है खाने पीने की। जी हाँ, अज असा गल करनी भरवां शिमला मिर्च बनाने के बारे च। भरवां शिमला मिर्च बनाने का पहले चार पांच आलू जड़े न से उबाली लेने, फिर शिमला मिर्च खरे कन्ने जड़ी असें धोई लैनी, उपर का डंडी का कट मारी करी डंडी जड़ी असें शिमला मिर्च से अलग कर देनी, शिमला मिर्च के बीज भी निकाल लेने, फिर एक कढ़ाई च तेल पाना, तेल जलू गर्म हो जाएगा तो उस जीरा पाई देना, जीरा बुझ जाएगा तो एक चुटकी हींग दी पानी, अद्धा चम्मच राई का पाना, चटकना देनी थोड़ी देर राई, फिर बरीक बरीक प्याज कट्टे जड़ा से इस पाई देना। जालू प्याज हल्का भूरा हो जाएगा तो इस आलू पाई देने, आलू जो पलटे कन्ने मैश करते रहना, आलू च हल्दी लून गर्म मसाला लाल मिर्च अपने हिसाबे कन्ने, हरी मिर्च भी अपने हिसाब कन्ने, धनिया पाउडर जीरा पाउडर कन्ने थोड़ा जिहा अमचूर जड़ा सह पाई लेना, ये सारी चीज़ां बारी बारी करी पाई करी खरे कन्ने जड़े से मिलाई लैनी। 10-15 मिनट तक आलू जड़े से थोड़ी हल्की आंच पर जड़े से खरे कन्ने बुझना देने, फिर गैस बंद कर देनी, आलू कुसी भी प्लेट कर निकाल के रखी लैने, फिर उसी कढ़ाई च जड़े से तुहाने जड़े तेल जड़ा थोड़ा जिहा होर पाना, तेल ज़्यादा भी नहीं पाना कन्ने घट भी नहीं होना चाहिए अपने हिसाबे कन्ने तेल पाना, फिर शिमला मिर्च से सारे आलू जड़े आलू मसाला जड़ा बनाई के रखे से भर देना, कने बारी बारी कने शिमला मिर्च कढ़ाई च जड़े से पांदे चलना, उपर का ढक्कन लगाई देना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाई करी शिमला मिर्चा जो उपर थले करते रहना, यानी कि पलटते रहना, चौं पासे का खरे कन्ने जड़ी इनसे पकाई लैनी। बस भरवा शिमला मिर्च जड़ी असें बने के लिए तैयार है। तो तुसा सखियां तैयारी करा अपनी रसोई च भरवा शिमला मिर्च बनाने दी, ते कन्ने कन्ने सुना ये प्यारा दिया लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1 बजने को है, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। NTA ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि DK शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर दो मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok.
4: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
3: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the education minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले।
5: चिल्ड्रन शुड रिसीव ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स थ्रू स्कैन कॉपीज। द आंसर शीट्स शुड रीच देम ट्रांसपेरेंटली। दिस इज अ प्रोविजन अंडर द ओएसएम सिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस सिस्टम। सम डिस्क्रेपेंसीज हैव कम टू नोटिस इन इट। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड इट विल बी करेक्टेड प्रॉपरली। वी विल मेक श्योर दैट नो जेन्युइन क्वेरी रेज्ड बाय एनी स्टूडेंट रिमेन्स अनआंसर्ड।
3: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination data.

0: and admit cards. For the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul Azha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed this while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Tehran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid ul Azha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: नेपथ्य में लुका छिपी करती पर्वत करते पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धुंध की घूंघट में खूबसूरत हुस्न शर्माते हुए अपने पर इतरा रहा हो। इबारत इन गर्मियों में सैलानियों और प्रेमियों के दिल को सुकून और शीतलता प्रदान करती है, यानी आज की इबारत के बारे में इन्होंने लिखा है और बेकरारी से इस सफ़र का इंतज़ार भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो ये गद्य है इबारत से पहाड़ों के हुस्न के साथ साथ परदेसी की बात जो है इस पर है, परिदृश्य के प्रणयात्मक भावनाओं वाले माहौल का एक अच्छा चित्रण खींचा गया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत इस ग्रीष्म ऋतु के सुख का चित्रण करते रहने में सक्षम है। किंतु वे परदेसी जो परदेश जाने में असमर्थ हैं उनके लिए तो एक उपहार है ये गद्य, किंतु जो असमर्थ हैं उनके लिए अपनी सुरीली धड़कन के सुरीले धुन वाले गीत ही कुछ एक घंटे के लिए इस ग्रीष्म ऋतु में शीतल बयार तो ज़रूर बहाएंगे। और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश बर्फीले पहाड़ों के हुस्न की बात करते हुए जहां पर्वती गांव के लोगों के सादगी और चेहरे की मुस्कान को उजागर करते हैं, साथ ही में इस गांव की खूबसूरती और वहां आने वाले प्रवासी परदेसी को मिलने वाली ताजगी भरे मौसम को महसूस करने की बात भी कर रहा है। ऐसी ताजगी की अनुभूति हाल ही में खुद मुझे हुई जब पिछले हफ्ते नैनीताल की वादियों में घूमने गया था और पहाड़ों जंगलों घुमावदार रास्ते के बेहतरीन नज़ारा देखकर मन सुकून से भर गया। तो ये तो बताइए कि ये जो रास्ते हैं या ये जो वादियां हैं जहां आप सभी घूमने जाते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता घूमने जाते हैं, तो इनमें बड़े छोटे छोटे से गांव होते हैं श्रोताओं, जो पर्वतों की जो जगह हैं वहाँ पर स्थित होते हैं, नेपथ्य में या कह सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। तो ऐसे कोई गांव जहाँ आप घूमने गए जो कुछ ख़ास था उसके बारे में आप हमें लिख सकते हैं ज़रूर। और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार इस गीत में कौन थे जो गीत अभी आपने सुना, और इस गीत में आपको ये बताना है कि ये वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं।

विश्वजीत और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत था मेरे सनम फिल्म का। मोहम्मद रफी की आवाज़ में मंजूर सुल्तानपुरी के बोल थे, उपेन अय्यर का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पिछले गीत के लिए लिखा है कि गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि गर्मियों का ये मौसम चाहे कितना भी तपन से भरा हो, मगर हम सबके मन में कभी न कभी बचपन की वो गर्मियाँ बसी रहती हैं। इन भरी गर्मियों में पहाड़ का हुस्न देखा है कभी, जब सारी दुनिया सूरज के ताप से हैरान परेशान होती रहती है, वो अपनी जगह पर अडिग अचल खड़ा रहता है। यही हुस्न है पहाड़ों का, इसमें बड़ी गहराई छुपी है। खेत में फसलों के बीच बनी पगडंडी से लगा गांव और वहाँ के लोगों की सादगी, सब कुछ मनमोहक स्मृति का वो छोटा सा आंचल जहाँ पहाड़ है, गांव है और कुछ ऐसी ही बातों की यादों में आज भी मन डूबा रहता है किसी परदेसी की याद में। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं। और जब आपने इन जगहों की बात की है तो एक बात आप ज़रूर बताएं कि क्या पहाड़ों की सैर ज़रूरी है या फिर कहीं कभी कभी घूमना फिरना ज़रूरी है? अगर है तो क्यों है? और आज के कार्यक्रम में जो गीत हमने सजाए हैं उसमें एक बड़े प्यारे से एक गीत है, उसमें बड़े प्यारे से एक गांव का नाम आता है जो सर्द वादियों में है। तो उस गांव को अगर आप पहचान सकें तो क्या ही बात है। और आपको बताना है कि ये जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं इसमें एक ख़ास तरह की नाव है, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्रकृति का सानिध्य, हरी भरी पहाड़ियाँ और वहाँ का सादगी भरा मासूम सम्मोहक लोक जीवन, उन लोगों की छोटी छोटी वाजिब इच्छाएँ, मनोकामनाएँ, मेहमान नवाजी करते करते प्यार में पूरी तरह

0: समर्पित हो जाना, परदेसियों से दिल के रिश्ते जोड़ लेना, ऐसी दिलकश बातों का सुंदर वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है जो इन गांव के लोगों की तरह मन को मोह लेता है। तो आपका मन किसने मोह लिया श्रोताओं, जब आप गए ऐसे किसी जगह पर घूमने के लिए? और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रेडियो की हर शय का इतना ही फसाना है, एक विविध भारती सुनना है, दूसरों को सुनाना है।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ

एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, कश्मीर की कली फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में। ये जो छोटी सी नाव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, श्रोताओं हमने आपसे पूछा कि इस नाव को क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की बोलचाल की भाषा में इस नाव को कुछ अलग ही कहते हैं, यह आपको बताना है। और कश्मीर के बड़े सारे सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जो हाथ की बुनी हुई होती हैं, क्या आपने उनमें से कोई चीज़ खरीदी है, या ऐसी जगहों का यानी पहाड़ी अंचलों का कोई मेला आपने देखा है। कुछ एक यहाँ के पारंपरिक पहनावे होते हैं, जैसे केदारनाथ की सुंदर घाटियों की अगर हम बात करें तो वहाँ कुछ गांवों में लवा पगड़ू या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलरीज की अगर बात करें तो बुलाक गुलबंद, तो इस तरह की कोई चीज़ क्या आपने इन जगहों से कभी ख़रीदी है। वैसे हमें ख़रीदना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हाथ से बनी हुई होती हैं और इन चीज़ों को ख़रीदने से हमारे दिल को एक खुशी तो मिलती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को जो रोज़गार है वो भी मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें बनाना इनका एक घर का कह सकते हैं कि पारंपरिक रिवाज सा हो जाता है, जो इनका इनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक श्रोता लिखती हैं कि आज मौसम पहाड़ों चांद रास्ते परदेसी बर्फीले आदि शब्दों की झड़ी लगने वाली है, और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि पहाड़ की प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है ऊंचे ऊंचे पर्वत, वहाँ की हरियाली, झरने, बर्फ से ढकी चोटियाँ और शुद्ध हवा मन को शांति और आनंद देती हैं। पहाड़ों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी सौंदर्य अद्भुत होता है। जलवायु संतुलन में भी पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकतर नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं, पर्यटन के लिए भी पहाड़ों का बहुत महत्व है। भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून के दो पल पहाड़ों के संग हमें रिचार्ज कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है श्रोता, और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे खेल भी होते हैं जिनमें हम अक्सर भाग लिया करते हैं, तो ऐसे खेल भी क्या आपने खेले हैं तो आप बता सकते हैं। स्की वगैरह जो होता है वो पहाड़ों का बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। और कुछ एक बाग बगीचे होते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जहाँ फूल बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, तो वो भी आपने देखे हैं तो वो आप हमें लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रकृति के नैसर्गिक रूपों का स्वाद चखना हो तो एक याद के रूप में संजोना चाहते हैं आप अगर, तो आम शहरी जिंदगी से बाहर निकल किसी भी पहाड़ पर सैर करना चाहिए। पहाड़ों पर कहीं आपको बर्फ के गिरते फाहों की ठंडक मिलेगी, शुद्ध हवा जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों से एक भीनी सी खुशबू लिए आपको ऐसी शीतलता प्रदान करती है, मन मस्ती से झूमने लगता है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पेड़ों की बात करी है तो ये ठंडे प्रदेश यानी अगर ख़ास हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ होता है जिसके पत्ते बड़े मशहूर हैं, क्योंकि ये पत्ते मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं श्रोताओं। तो इन पत्तों के बारे में बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शिकारा लिखा है, जो कश्मीर की ख़ास नाव है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताज़ी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मनमोहक दृश्य यकीनन सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

जॉय मुखर्जी और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। वैसे हम आपसे पूछना चाहते थे कि संगीतकार के बारे में। जी हाँ, ये गीत जब सुनाई देते हैं श्रोताओं तो बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा ही एक चित्रण हमारी ऐसे ही एक बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता लिखती हैं, गर्मियों में ठंडे और बर्फीले पहाड़ों की सैर मानसिक शांति और सुकून के लिए बेहतरीन होती है। ताज़ी हवा, चांदनी रातें, परदेसियों से मिलना, मोहक दृश्य, यकीनन सब कुछ अच्छे लगते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि ये विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं प्रकृति की एक अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाकृति है, जो अपनी विशालता, शांत वातावरण और अलौकिक दृश्यों से हर किसी के मन को असीम सुकून और आनंद से भर देती है। इन खूबसूरत पहाड़ों की ढलान घने देवदार, पाइन और ओक के पेड़ों से ढके रहते हैं, जो प्रकृति की मखमली हरी चादर जैसे दिखते हैं। साथ ही पहाड़ों के सीने को चीर कर निकलने वाले जलप्रपात और कलकल बहती हुई नदियां पहाड़ों के शांत वातावरण में एक मधुर और प्राकृतिक संगीत घोल देते हैं, जो भी यहां आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि अगर फिरदौस बरवे जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं। और एक श्रोता और लिखते हैं कि पिछली गर्मियों में मुझे हिमाचल प्रदेश के सुंदर पर्यटन स्थल खजियार जाने का अवसर मिला। चारों ओर फैली हरियाली, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं मन को बहुत सुकून दे रही थीं। वहां का सुंदर मैदान और छोटी झील देखने लायक थी। शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया। खजियार की ये यात्रा मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गई। आप ये एक बात बताएं श्रोताओं कि आपने इतनी जगहों पर घूमा है, आपने यहाँ की जो सुंदर वादियाँ हैं वो इसी तरह से रहें और प्रकृति की गोद में ऐसे ही रहें, ये हमें देखने में क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये साफ़ सुथरी रहती हैं, और ऐसी क्या आपने कोशिश की तो ये हमें ज़रूर बताएं। और कौन सी ऐसी जगह थी जो आपको बहुत अच्छी लगी। एक और श्रोता ने लिखा है, गर्मियों में पहाड़ों की खूबसूरती मन को सुकून देती है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस तपती हुई गर्मी में पहाड़ पर जाना बहुत अच्छा लगता है। एक और भी श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, हम शामिल करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। आप यहाँ की फोटोग्राफी के बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं।

संजय खान और साधना नजर आते हैं और ये सेब का बगीचा है श्रोताओ, बड़ा ही सुंदर। और आप एक सवाल का अगर जवाब दे सकें कि कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बाजारों में चहल पहल बढ़ते ही रौनक दुगनी हो जाती है। जी हाँ, इन जगहों के जो बाजार होते हैं श्रोताओं, वो बहुत अलग होते हैं। दूर दराज से आए सैलानी यहाँ की बनी हाथ की कलाकृतियाँ, गर्म शॉल और मीठे पहाड़ी सेब बड़े चाव से खरीदते हैं। हर मोड़ पर मुस्कुराते चेहरे और उनकी मेहमान नवाजी अजनबियों को भी अपना बना लेती हैं। शाम ढलते ही जब पहाड़ों पर दियों की तरह रोशनी जगमगाती है, तो एक सुहाना रूहानी जुड़ाव महसूस होता है। मुसाफिर यहाँ की अनमोल यादें और कभी न टूटने वाला स्नेह अपने दिल में समेट कर अगले साल फिर लौटने की कसम खाकर विदा लेते हैं। एक श्रोता और लिखते हैं कि पहाड़ों पर यही मौसम सबसे ज़्यादा सुकून देता है। जो सर्दी का मौसम सा होता है, वो पहाड़ों पर शोरगुल बिल्कुल थम सा जाता है। आवाज़ आती है तो सिर्फ हवा, नदी के बहते पानी और कलरव करते पक्षियों की। पहाड़ी जीवन शैली सादगी में स्थिरता को सबक देती है। पहाड़ हमें बुलाते ही नहीं, वो पुकारते हैं। जो एक बार चला जाए वो बार बार वहाँ जाना चाहता है। बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि हिमालय की पीर पंजाल की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां हो या अरावली की शांत प्राचीन पर्वतमालाएं, हर पहाड़ अपने भीतर अलग कहानी, अलग सुकून और अलग संगीत समेटे हुए है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता अपने चरम पर होती है। बर्फ की चादर हटने के बाद हरी भरी वादियां, ठंडी और ताज़ा हवाएं और रास्तों पर पसरा सन्नाटा मन को असीम सुकून देता है। जब सुबह के समय पहाड़ों से धुंध का पर्दा हटता है, तो ढलानों पर बसे छोटे छोटे गांव और चमकती हुई बर्फीली चोटियां किसी जादुई सपने जैसी दिखाई देती हैं। यहाँ की सादगी, प्रकृति वैभव और पहाड़ों का शांत वातावरण मन मोह लेता है। पर्वत केवल धरती का श्रृंगार नहीं, बल्कि भावनाओं का वो संसार है जहाँ हर परदेसी अपना एक हिस्सा छोड़ आता है। आपने पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करी है, तो लीजिए वहीं का गीत सुनिए।

महबूबा फिल्म का ये गीत था राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। श्रोताओ, आपने क्या इस गांव को देखा है? क्या ये गांव जिसका जिक्र हो रहा है वो सचमुच है हमारे देश में? अगर आप गए हैं या फिर अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, तो ये भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत सारी सावधानियां भी होनी चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली चादरों में सिमटे बर्फ की चादरें में सिमटी बर्फ की चादरें और हसीन वादियों पर फिल्माए गए गीतों को सुनकर इस तपती हुई गर्मी में मन को ठंडक पहुंचेगी। बर्फीले पहाड़ों में छिपी प्राकृतिक सुंदरता निश्चित रूप से मन को गहरा सुकून और शांति देती है। श्वेत बर्फ, साफ नीले आसमान और पहाड़ों के ऊपर से बहते झरनों का दृश्य और ठंडी हवाओं का झोंका शारीरिक और मानसिक थकान को स्वतः ही दूर कर देता है। और एक और श्रोता लिखते हैं, अब पहाड़ों पर गर्मी के मौसम में बर्फ का अभाव सा है। वहाँ अब ग्लोबल वार्मिंग से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान जो हैं वो ज़्यादा, इन्होंने कुछ लिखे हुए हैं। जी हाँ, इस बात का भी हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों पर घूमने जाएं तो यहाँ की सुंदरता को बिल्कुल बरकरार रखें। और ये तभी हो सकता है जब हम प्रकृति के साथ साथ चलें। और जिस गाँव का जिक्र है, वो गांव जो गीत हमने आपको सुनाया, उस गांव के बारे में आपको लिखना है कि क्या ये गांव सचमुच अस्तित्व में है, ये कौन सा गांव है जिसके बारे में गीत में बातें की जा रही थीं। पहाड़ों की रानी किस शहर को कहते हैं श्रोताओं?

गीतकार आप बता दें इस गीत के, प्रोफेसर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज़ों में। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत के शब्दों से जो गीत उभर कर आ रहे हैं उन्हें हमारे कई बंधुओं ने अपनी सूची में शामिल किया है। जिक्र जब पहाड़ों का हो तो मैं खुद ब खुद शामिल हो जाता हूँ, मुझे पहाड़ों पर जाना, वहाँ घूमना, वहाँ के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। इस क्रम में मैंने भारत के सभी पहाड़ी पर्यटन स्थल का दौरा किया है और अपनी पसंद के हिसाब से अगर नामांकन करूँ तो पहलगाम, शिलांग और खजियार, बहुत सारी जगहों का इन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं श्रोताओं, या कोई यादगार चीज़ जो आपके साथ रह गई? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो कुछ एक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ताउम्र याद रहते हैं, तो ऐसा कोई आपके साथ वाकया हो तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफ़र में पहाड़ों के बीच सुकून भरे वातावरण में मधुर गीतों के साथ चलने की तैयारी है और इन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से बहुत सारे गीतों को लिखा है, तो देखते हैं कि और कौन से गीत आज शामिल होते हैं। वैसे ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस गीत का जो पिक्चराइजेशन है श्रोताओं, वो एक देश है वहाँ के बड़े ही पारंपरिक और प्राचीन बाजार का है। क्या आप कभी यहाँ गए हैं? क्या आपने इस बाजार को कभी देखा है, कभी कुछ खरीदा है?

हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में। और ये हमने पूछा था कि इसकी शूटिंग कहाँ की है श्रोताओं, तो ये भक्तपुर दरबार स्क्वायर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। और ये जो जगह है ये काठमांडू नेपाल में है। तो क्या आप यहाँ गए हैं इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ की जो पारंपरिक चीज़ें हैं, यहाँ हाथ से बुनी हुई चीज़ों की बात अगर हम करें, या फिर वुड कार्विंग्स यानी कि जो लकड़ी के सामान होते हैं जिनमें नक्काशी की जाती है, जैसे कश्मीर में अखरोट की लकड़ी से अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी की जाती है, पॉटरीज भी यहाँ की जो है वो बहुत बिकती है, और भी खाने पीने की चीज़ों के लिए भी ये जगह बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या आप इस जगह गए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजें। और ऐसे कुछ एक शहर हमारे देश में भी, कुछ एक नहीं बल्कि बहुत सारे शहर हैं, और अगर हम बात करें शिमले की बात करें, या फिर हम बात करें मसूरी की बात करें, कश्मीर की बात करें, या फिर हम केदारनाथ की घाटियों की बात करें, तो ऐसी जगहों के बारे में भी आप अपनी बातें हमसे बता सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफ़र क्या आपने किया है हमें बताएं।

सुजीत कुमार और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे आराधना फिल्म से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 3 साल पहले जब कोंकण से वापस आ रहे थे तब ट्रेवलर फोड़ा घाट से आ रही थी, बीच में रुकी, सब बाहर निकले, हाय वो क्या नज़ारा था, बेमिसाल हरा भरा हुस्न सह्याद्री का, वो पहाड़, उस पे वो बड़े बड़े पेड़, नीचे गहरी खाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों नदी पर जब जाते हैं, घर से खाना लेकर जाते हैं, ये सब एक साथ मिलकर खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और वहाँ की शीतलता मन को सुकून पहुँचाती है। ऐसी यादगार यात्राएं हमेशा याद रहती हैं। श्रोता, हमने आपसे चंबा नाम के गांव के बारे में पूछा था और उसके बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है। ये गांव पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है उसके बीच बसा हुआ है, बड़ा ही सुंदर सा गाँव है और महबूबा फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मसूरी को कहते हैं पहाड़ों की रानी, दूसरे चंबे का गांव भी है। वैसे चंबा घाटी में बहुत से छोटे छोटे गांव हैं लेकिन गाने में जिस गांव की बात है वो बड़े ही दुर्गम क्षेत्र में है। एक और श्रोता ने लिखा है कि शीतल शीतल पवन झकोरे, हरे भरे ऊँचे जो पेड़ों से सजी पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ, उनसे लिपटा उदक से पानी से यानी कि भरे काले बादल का मंडल, ये सुंदर दृश्य देखा है नीलगिरी पर्वत के उत्कमंड नगरी में। जी हाँ, दो डब्बा बेटा शिखर का, जिसने हमेशा के लिए मेरे मन को मोह लिया है।

ये रात फिर ना आएगी इस फिल्म का गीत था, विश्वजीत और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है संवेदना पर। आज के आधुनिक दौर में हमारी संवेदनशीलता कहीं खोसी गई है। हमें इंसान बनाने वाली वो भावनाएं, वो संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। हम इतने आक्रामक और संवेदनहीन हो गए हैं कि हमें AI कहना गलत नहीं होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन हम में भावनाओं की कृत्रिमता बढ़ती जा रही है। एक ऐसा दर्द पनप रहा है जो कि तब होता है जब शरीर से तो कोई सामने हो पर आत्मा से गायब हो।

उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग करके ही भोग करो। जो स्वयं छोड़ता है वही दूसरों को दे पाता है। लेकिन आज मदद करने की भावना जैसे खत्म ही हो गई हो। व्यक्ति खुद पर आई समस्या के लिए दूसरों की मदद की अपेक्षा करता है, लेकिन वहीं दूसरों को परेशान देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। जिनके पास जीने के लिए कोई क्यों होता है, कोई वजह होती है, कोई लक्ष्य होता है, वो लगभग किसी भी कैसे को सहन करते हुए खुद को जीने और दूसरों को जीवन देने के रास्ते तलाश कर ही लेते हैं।

संस्कृत में कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, यानी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। कार्ल जंग ने कहा था, सबसे तीव्र संघर्ष यदि पार कर लिए जाएं, तो अपने पीछे ऐसी सुरक्षा और शांति की अनुभूति छोड़ जाते हैं जिसे फिर आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। और फ्रेडरिक नाइट्स की माने तो जो हमें मार नहीं पाता वो हमें और अधिक मजबूत बना देता है। और महाभारत में भी कहा गया है, नायमात्मा बलहीने ने लभ्या, यह आत्मा ये ऊंचाई कमजोरों को नहीं मिलती।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोक भवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की

0: घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जनकल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में शागिर्द फिल्म का गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

बदन

0: आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लाड साहब फिल्म का ये गीत था हसरत जयपुरी का लिखा तर्ज थी शंकर जयकिशन की।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म औरत में आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला रफ़ी ने। श्रोताओं, सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को हैं अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो 3 बजे तक चला। कुछ मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान जारी है क्योंकि यहां मतदान का समय खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लाइनें लगी हुई है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1276 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और आज रात तक सभी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 17,30,030 मतदाता हैं। इसमें सबसे अधिक करीब 4 लाख मतदाता कांगड़ा जिला से हैं, जबकि सबसे कम 8,875 मतदाता लाहौल स्पीति में हैं। इस बीच 30 मई को तीसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज सुबह 3 बजे सक्रिय चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर सकेंगे। तीनों चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर उम्रदराज मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही।
1: मेरा नाम आरती है, मैं गांव मालोवाला की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रहने वाली हूं। आज मैंने पंचायती चुनाव में अपना पहला वोट दिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आप सभी भी अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
2: मेरा नाम सदस्या है, मैं गांव बंथिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की निवासी हूँ। आज मैंने अपना अधिकार पूरा किया है वोट डालकर, और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट डालकर अपना अधिकार पूरा किया है।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा यह पहल राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला में ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अदा की गई। चंबा में भी ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अता की गई। इस मौके पर जहां छोटे छोटे बच्चे नई पोशाकों में उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ नमाज में भाग लिया। कुल्लू जिला की लगघाटी की बढ़ई बाग पीच सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है भारत की डिजिटल जनगणना 2027, पारदर्शिता, तकनीक और जनभागीदारी का नया अध्याय। वाचक स्वर है शशि चौहान का।
0: भारत की जनगणना केवल जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान है। अब भारत की आगामी जनगणना 2027 एक नए और आधुनिक स्वरूप में सामने आ रही है। इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में इस ऐतिहासिक अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना प्रक्रिया को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना का होगा, जबकि दूसरा चरण वास्तविक जनगणना का होगा। इस नई व्यवस्था का सबसे अहम पहलू यह है कि नागरिक अब केवल सरकारी अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि वे खुद भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जनगणना 2027 का प्रथम चरण यानी मकान सूचीकरण और आवास गणना हिमाचल प्रदेश में 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान घरों की स्थिति, निर्माण सामग्री, बुनियादी सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। मकान का उपयोग क्या है, छत, दीवार और फर्श किस सामग्री से बने हैं, पीने के पानी का स्रोत क्या है, बिजली, रसोई गैस और शौचालय की उपलब्धता जैसी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। इसके अलावा टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और परिवहन साधनों जैसी सुविधाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना का सबसे बड़ा नवाचार स्वगणना सुविधा है। आम नागरिक अब सुरक्षित ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी भर सकेंगे। प्रदेश में यह सुविधा 1 जून से 15 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें एक स्वगणना आईडी नंबर प्राप्त होगा, जिसे बाद में घर घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा। यह व्यवस्था नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। जब 16 जून से 15 जुलाई के बीच प्रगणक घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे, तब स्वगणना आईडी देने पर नागरिकों द्वारा पहले से दर्ज जानकारी स्वतः प्रगणक के मोबाइल ऐप में दिखाई जाएगी। इससे समय की बचत होगी, दोबारा जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार प्रगणक पारंपरिक कागजी फॉर्म लेकर नहीं चलेंगे, वे एक आधुनिक HLO मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। इस ऐप के जरिए जानकारी वास्तविक समय में दर्ज होगी। इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी। इसके साथ ही जनगणना की पूरी प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS पोर्टल भी तैयार किया गया है। यह पोर्टल अधिकारियों को प्रशिक्षण, संसाधन प्रबंधन, प्रगति की निगरानी और लॉजिस्टिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करेगा। यानी अब जनगणना केवल आंकड़ों के संकलन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक तकनीक संचालित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक मॉडल के रूप में सामने आएगी। जनगणना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू गोपनीयता भी है। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी का क्या होगा। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी जानकारियां जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। साथ ही सही जानकारी देना नागरिकों की कानूनी जिम्मेदारी भी है। हिमाचल प्रदेश में इस बार हर नागरिक को अपनी और अपने परिवार की गणना में सीधे भागीदार का अवसर मिलेगा। इससे न केवल जनगणना कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदेशवासियों को सीधे अपनी जानकारी अपलोड करने का अवसर देना प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वास्तव में जनगणना 2027 केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं है, यह डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: हाँ तो सुनाली, कुछ सच में इतना बढ़िया लगता है ना गाना ये.
1: जब है ना, जब कोई भी त्यौहार हो तो अलग ही एक ना आनंद की अनुभूति होती है ना,
0: बिल्कुल.
1: फिर घर में सब लोग मिलते हैं और खुशियों की बरसात होती है. वैसे कुछ शख्सियत भी ऐसी होती है ना जिनके व्यवहार के कारण, जिनके कार्यों के कारण हमें ना हर बार एकदम खुश खुश रहते हैं, हमें ना उनके काम
0: हमें एक प्रेरणा मिलती है. कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी कुछ आगे करने का सोचते हैं या हम ये निर्णय लेते हैं कि हमें अपने लिए आगे क्या करना चाहिए, या हम ऐसे बैठे हैं तो हमें और कुछ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टैलेंट को किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं.
1: जी,
0: आज हम बात करेंगे
1: के चेलम्मल
0: जी.
1: जी, जिनका जन्म 6 फरवरी 1957 को उनका हुआ था जन्म, और उनका नाम है श्रीमती चेलम्मल, जिन्होंने कक्षा 6 तक की पढ़ाई की और नारियल अम्मा के नाम से जो मशहूर है. और चेलम्मल दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली है, और चेलम्मल 10 एकड़ जमीन पर एकदम अलग तरह से उन्होंने खेती की, यानी जैविक तरह की उन्होंने खेती की.
0: बिल्कुल. और वो जैविक खेती के माध्यम से अनानास, केला, लौंग और अदरक की खेती करती हैं. इसके अलावा वो अपने बगीचे में अनोखे तरीके से नारियल की खेती करती हैं, जिसके कारण वो किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई और लोग उन्हें नारियल अम्मा कहने लगे.
1: और उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रेरित किया. उन्होंने कई सरल तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती बहुत आसानी से की जा सके, इसमें लागत भी कम आती है और पेड़ों को भी नुकसान से बचाया भी जा सकता है.
0: बिल्कुल. और उन्होंने नारियल और ताड़ के पेड़ों को नुकसान से बचाने के लिए सस्ते तरीके खोजे हैं. वो हमेशा दूसरे किसानों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार रहती हैं. उन्होंने आसपास के गांवों के 170 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है.
1: और कृषि कॉलेज और संस्थान अपने छात्रों को अध्ययन के लिए उनके खेत पर भेजते हैं, जहाँ वे नारियल के पेड़ उगाती है. उन्हें दालचीनी, तेज पत्ता, काली मिर्च, पान का पत्ता, रतालू, सुपारी, अदरक, हल्दी, पपीता, केला, चीकू, हेलिकोनिया फूल और गेंदा और बहुत सारी सब्जियों की फसलों को उगाकर उन्होंने अपनी आमदनी में भी बढ़ाई की.
0: बिल्कुल. कितनी ज्यादा चीजों को उन्होंने, वो भी देखिए आज के समय में जब फसलों को इतना ज्यादा जब नुकसान पहुंचता है या इस रासायनिक चीजों से, उस समय वो जैविक खेती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है. और श्रीमती चेलम्मल ने नारियल को चूहों से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए नए उपाय विकसित किए. वो अपने खेत में जैविक कृषि तकनीकों को अपनाती हैं, साथ ही कीटों से फसलों को होने वाले रोगों और नुकसान से बचाव के लिए भी उन्होंने बहुत से कारगर उपाय विकसित किए जो बहुत काम के साबित हुए.
1: और चेलम्मल ने अपने खेत में हरित खाद और गोबर की खाद का उपयोग किया है, साथ ही वो परागण के लिए मधुमक्खी पालन करती है और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती है. अंडमान में खेती करते हुए श्रीमती चेलम्मल ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है.
0: बिल्कुल. देखिए कितनी बड़ी बात है, वो मधुमक्खी जो जिसके बारे में कहा था कि बहुत जरूरी है ना इस पृथ्वी को जीवन को बचाए रखने के लिए, तो वो परागण के लिए बहुत सारी फसलों का परागण वो करती है मधुमक्खी, तो उसके लिए भी उन्होंने कितना किया. तो बहुत ज्यादा वो समझ लीजिए पर्यावरण की रक्षा की तरीके से एक तरह से. और लेकिन उनका अब जो खेत है वो लोगों के लिए, कृषि और छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है. उनका खेत फसलों और मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखते हुए बहुत अच्छी आय का साधन है. उन्होंने अंडमान में एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में एक अवसर देखा, इसलिए उन्होंने अपने खेत में एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा भी दिया है.
1: अब स्थानीय और पूरे देश के अलावा विदेशों से पर्यटक उनके खेत को देखने समझने आते हैं. और श्रीमती चेलम्मल को अब तक बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें केरल के नारियल विकास बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है.
0: बिल्कुल. और मसालों और फूलों की खेती के क्षेत्र में प्रगति के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड, साथ ही इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, ICAR और CIARI पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित किसान मेले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला है.
1: और द्वीप पर्यटन महोत्सव 2014 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित फल फूल और सब्जी के लिए प्रथम पुरस्कार, और वर्ष 2016 में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से प्रगतिशील सर्वश्रेष्ठ कृषक का पुरस्कार भी आपको मिला है.
0: बिल्कुल. और उनके अनोखे जैविक कृषि तरीकों, नवाचार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.
1: और सचमुच ऐसी जब महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें कितना इन्हें गर्व महसूस होता है कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और हमारी सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित.
0: पढ़ाई ना होने का रोना भी नहीं रोती है.
1: बिल्कुल.
0: पढ़ाई सिर्फ देखिए हमें एक डिग्री देती है और हमें थोड़ा हमारा ज्ञान हमारा विकसित करती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो जो एक कला होती है ना, वो हर चीज को, वो जो कला होती है जो मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाए, तो वो कला को अपने निखारना चाहिए.
1: और अब एक संदेश सुन ले.
0: बिल्कुल.
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: तो आरती, हमारी अपना कार्यक्रम सखी सहेली, उसका जन्मदिन है तो हमारे मन में भी बहुत खुशी है कि हम बहुत धूमधाम से पूरे श्रोताओं के संग, सखियों के संग ये हमारा जन्मदिन मनाएंगे। तो आप आ रही है ना?
0: बिल्कुल आ रहे हैं। आना ही है भाई, जन्मदिन मनाना है तो जश्न में शामिल तो होना ही है।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता है, हमारी सखियां वे भी आएंगे। पर इससे पहले हम एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं
1: गीत।

0: तो आंखों ही आंखों में हम पता कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है.
1: बिल्कुल, वो तो पता चल ही जाता है चेहरे को देख के.
0: कि देखिए कभी कभी ऐसा था ना, हाल ही में रिजल्ट आए बच्चों के, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भले उनके 57% हो तो कहेंगे कि हमारे बच्चों को 75% आए.
1: ये तो होता है, ये तो होता है.
0: और वो ये भी नहीं, वो उन्हें मालूम होता है कि कोई थोड़ी मार्क लिस्ट देखने आने वाला है, उन्हें तो नहीं मालूम पड़ेगा. पर देखिए एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है. और क्या होता है ना, बच्चों को जब ये झूठ सुनने की आदत हो जाती है ना, तो उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी झूठी तारीफ हो. और फिर आगे चल के जब उन्हें आगे की दुनिया में जाके अगर किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वे टूट कर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ना असफलता का सामना करने की आदत ही नहीं होती है. उन्हें
1: उनको लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ जब आप उनके सामने उनकी तारीफ कर देते हैं झूठी ना, तो उनको लगता है नहीं कोई बात नहीं, हमारे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी मम्मी या मेरे जो परिवार वाले हैं वो कह ही देंगे, किसी ना किसी से कुछ तो कह ही देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो फिर वो उतनी मेहनत भी नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस भी नहीं होते, और फिर अपने वो खेल में उसी तरह से अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं. जबकि आप उन्हें जब समझाएं चीजें, वो चीजों को कि नहीं तुम्हें आगे अच्छा करना है, और वो जो जो चीज उनकी रिजल्ट है वही आप सबको बताएं, तो उनको लगेगा नहीं हमें अब आगे करना पड़ेगा कुछ.
0: जी, एक हमारे साथी ने लिखा है, बच्चों की झूठी या बड़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बच्चों में अहंकार आ जाता है, वे वास्तविक चुनौतियों का सामना करने से डरने लगती है, और माता पिता की विश्वसनीयता भी कम हो जाती है. बिना किसी खास वजह के तारीफ करने से बच्चे खुद को हर चीज में परफेक्ट समझने लगते हैं. जब वे असल दुनिया में असफल होते हैं तो गहरे गुस्से या निराशा में चले जाते हैं. जब बच्चों को लगता है कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके भीतर नई चीजें सीखने मेहनत करने की ललक कम हो जाती है. उनके प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं. तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही है. कहना तो ये चाहिए कि मुझे अच्छा लगा तुमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितनी मेहनत की. प्रयास अपना होता है, परिणाम दूसरों के हाथ में होते हैं. इससे बच्चों में लगन बढ़ती है. और बहुत बार बच्चों के टीचर अभिभावकों को शिकायत करते हैं, कुछ भी करने पर कहता है तो मैं कर लूंगा पर बहुत तेज हूँ, करता कुछ नहीं है. तो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है. उन्हें सिखाएं, और हर काम परफेक्ट हो कोई जरूरी नहीं, उस काम में निराशा भी नहीं होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और लेकिन उस चीज को लेके इतना ज्यादा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को आप कहें कि इस तरह से, तो बच्चे का वो जो मनोबल है ना, वो जो उसकी ललक होती है वो कम हो जाती है. इसलिए एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बात अगर झूठी प्रशंसा की हो तब बच्चे तो क्या बड़ों की भी नहीं करनी चाहिए, और अरे विविध भारती की भी झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हालांकि वो हमें ऐसा मौका कभी देता नहीं कि हमें उसकी झूठी तारीफ करनी पड़े. तो झूठी प्रशंसा खासकर बच्चों की तो नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है. इसलिए झूठी तारीफ के बजाय उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सच्ची सराहना करनी चाहिए और उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना चाहिए.
0: क्या बात है,
1: ताकि एक हमारे आगे कर सकें.
0: जी, एक हमारे साथी लिखते हैं, तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकती है, तुमसे अच्छा कोई नहीं. ऐसी बातें सुनकर बच्चा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होने लगता है. जब बच्चे को बिना मेहनत के बार बार प्रशंसा मिलती है तो अपनी कमियों को समझ नहीं पाता. अतः माता पिता को चाहिए कि बच्चों की तुलना कभी दूसरों से ना करें और ना ही झूठी प्रशंसा करके उन्हें भ्रम में रखे. सच्चाई, प्रोत्साहन और सही मार्गदर्शन ही बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव बनते हैं. इसलिए बच्चों से प्रेम करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, लेकिन प्रशंसा हमेशा सच्ची और उचित होना चाहिए.
1: बिल्कुल. और एक और श्रोता है, इन्होंने बहुत बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं इसमें से. तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों की झूठी ये अत्यधिक प्रशंसा उनके विकास के लिए हानिकारक हो सकती है, ये उन्हें आत्ममुग्ध बना सकती है, असफलता से डरने वाला बना सकती है, और उनमें वास्तविक क्षमताओं के प्रति संदेह पैदा कर सकती है. सच्ची और विशिष्ट तारीफ जैसे कि मेहनत, प्रक्रिया या व्यवहार की, इनकी आप तारीफ करिए. उनके आत्मविश्वास और लचीलेपन की तारीफ करिए. झूठी प्रशंसा के जो दुष्प्रभाव है वो ये देखने को मिलते हैं कि वो बच्चा अहंकारी भी हो जाता है, आत्ममुग्ध भी हो जाता है, और साथ ही अनावश्यक तारीफ बच्चों को अपने साथियों से ज्यादा श्रेष्ठ महसूस कराती है, जिससे वो उनमें अहंकार पैदा हो जाता है, और वो विफलता से डरने भी लगते हैं, और उनमें लगता है कि मैं बेहतरीन हूं, तो वो एक झूठ उनके अंदर आ जाता है.
0: एक हमारे साथी ने लिखा है आरती, कि अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा, वैसे देखा जाए तो मैं कभी अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा नहीं करती, लेकिन हाँ जब भी वे कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी दिल से तारीफ जरूर करती हूँ. मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. मेरी बात सुनकर बच्चे खुश भी हो जाते हैं और उन्हें आगे और अच्छा करने का मोटिवेशन भी मिलता है. मेरा मानना है कि बच्चों की सही समय पर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है. इसलिए सकारात्मक सोच के साथ बच्चों की हौसला अफजाई जरूर होनी चाहिए, बस झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कुछ इस तरह की बात लिखते हैं, लिखते हैं कि तुम सबसे होशियार हो, तुम कभी गलती नहीं कर सकते हो, इस तरह की जो चीजें वो उन्होंने लिखी हैं। और साथ ही बच्चों की, एक और जो श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की झूठी प्रशंसा करना उनके विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और असफलता मिलने पर बच्चे जल्दी टूट जाते हैं, जोखिम लेने से डरने लगते हैं, वो नई चुनौतियां लेने से बचते हैं, और उनको तारीफ की लत लग जाती है, वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए काम करने लगते हैं, और उनके अंदर सीखने की इच्छा खत्म होने लगती है, उन्हें लगता है कि वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें और मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और परिणाम की बजाय अगर बच्चे की मेहनत की हम तारीफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि तुम बहुत अच्छे हो की बजाय कहें कि तुमने ये चित्र बहुत ध्यान से बनाया है, तो और साथ ही गलती होने पर उसे प्यार से सुधारने की प्रेरणा भी दें।
0: बहुत अच्छी बात। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपने जान पहचान परिवार में देखा है कि जिसका बच्चा औसत दर्जे का छात्र है, बहुत मेहनती भी नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं, हर बच्चा अपना अपना व्यक्तित्व होता है, उसके गार्जियन अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जब 12 तक अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेहनत भी नहीं करना चाहता, तो क्यों उसे IAS IPS का ख्वाब दिखाया जाए। एक दिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, पर भगवान का शुक्र है लड़का आज सही सलामत है और अपने साधारण सी नौकरी और ज़िंदगी में खुश है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि भाग्य चमत्कार कभी कभी ही होते हैं, सब चमत्कार एक साथ नहीं होते। ये भी सही बात कही है। और आरती, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।

0: ब्रेक
1: सच
0: के
1: में।
0: बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सच में सोनाली, जो बच्चों की अगर हम जब तारीफ करते हैं ना, तो उनकी अगर हम सकारात्मक तारीफ करें ना, कि कहें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है या बहुत मेहनत करता है, तो बजाय नंबर बताने की, हम ये इस तरीके की अगर तारीफ करें तो बच्चे के अंदर भी सकारात्मक जो एक एनर्जी आती है वो आएगी, और
0: जी
1: वो भी सोचेगा कि नहीं, अब मुझे और मेहनत करनी है ना, और मेहनत करके आगे बढ़ना है, ना कि मुझे सिर्फ अब झूठी तारीफ पे रहना है। इसलिए बहुत जरूरी है
0: और
1: इस
0: अब
1: तरह
0: क्या
1: से।
0: करें,
1: एक गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।

0: आरती सचमुच दिल की बात असली नकली चेहरा बता ही देता है। एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि बच्चों की तारीफ तो कीजिए परंतु उन्हें चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। अक्सर झूठी प्रशंसा करने से वे आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते और आभासी दुनिया में जीते हैं। ये बहुत सही बात लिखी है ना।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बच्चों की हर बात पर झूठी प्रशंसा करना सही नहीं होता क्योंकि इससे वो अपनी असली मेहनत और काबिलियत को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि जब हम बिना वजह हर काम की तारीफ करते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सच और दिखावे का फर्क भूलने लगते हैं। सच्ची और सही प्रशंसा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है लेकिन झूठी प्रशंसा उन्हें केवल दूसरों की तारीफ पर निर्भर बना सकती है। इससे वो असफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल समझने लगते हैं। और मेरे अनुसार बच्चों को उनकी मेहनत ईमानदारी और कोशिशों के लिए सराहना मिलनी चाहिए ना कि सिर्फ खुश करने के लिए। इससे वो जीवन में सच्चाई आत्मविश्वास और मेहनत की असली कीमत को समझ पाते हैं।
0: एक साथ लिखते हैं कि बच्चों की झूठी या बढ़ा चढ़ाकर की गई प्रशंसा उनके आत्मविश्वास और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बच्चे वास्तविकता से दूर हो सकते हैं और आलोचना को स्वीकार करने में असमर्थ हो सकते हैं। सच्ची और सही तारीफ करने के लिए उनके प्रयासों पर ध्यान दें ना कि उनके परिणामों पर। इन्हें मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की परवरिश करना आसान नहीं है। उनके लालन पालन में हमेशा सकारात्मक रवैये की जरूरत होती है जिससे कि वो प्रोत्साहित महसूस हो। बच्चों को जब माता पिता से प्रोत्साहन मिलता है तो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे एक कामयाब जीवन जीते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि वो प्रोत्साहन कैसा हो। जरूरी है कि प्रोत्साहन भी सही तरीके से किया जाए जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करे और साथ में अपने मनपसंद क्षेत्र में भी सफलता पाए।
1: बिल्कुल,
0: यानी मिलजुल कर हमारे सभी साथियों ने इसी तरह की बात लिखी कि भैया अपने बच्चों की झूठी प्रशंसा ना करें, जैसे हैं बच्चे, और उन्हें उनके बारे में बताएं कि भाई हाँ इतने ही नंबर मिले हैं उन्हें, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए ना, कभी ऐसा नहीं है कि
1: नंबरों से उनकी काबिलियत को आप नहीं बता सकते।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ लोगों को बहुत परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं पर अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, आप आइंस्टीन वगैरह इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनको देखिए। तो आप एक छोटा सा कमेंट उसको ले लेते हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आप बच्चों की झूठी तारीफ करेंगे तो घर पर अगर कोई मेहमान आए तो उनके सामने बहुत लंबी लंबी फेंकेंगे कि हमारा बच्चा इतने नंबर लाता है, अरे ये तो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाया और इसके बहुत सारे दोस्त हैं, इससे अच्छे नंबर तो उसके स्कूल में कोई लाता ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगी ऐसा मत कीजिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी आदत भी होती है उनकी आदत भी यही होती है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता तो हमारी तारीफ कर ही देंगे, हम कुछ भी करें हम तो बोल तो हमें तो बोलना नहीं है। तो इससे बच्चे की आदत बन जाती है तो इससे जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झूठ में जीने लगता है। तो इसलिए उनको कहने का मतलब है कि आप इसलिए बच्चों की जो झूठी तारीफ है वो मत करिए।
0: और है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना आरती कि वो बच्चा बहुत ज्यादा गेम में उलझा हुआ है तो भी है ना बहुत सारे घर के सदस्य जो होते हैं, मम्मियां होती है, पापा होते हैं, घर के लोग है ना छुपाते हैं कि नहीं नहीं नहीं वो तो पढ़ाई करता है, वो तो मोबाइल में लगा रहता है, तो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया, आजकल तो मोबाइल में देख के प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जाने अनजाने में गेमिंग के दलदल में फंस जाते हैं। ये आज का युग जो है ना तकनीक और इंटरनेट का युग है, जैसे मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम ने बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के जीवन में जगह बना ली है। मनोरंजन के साधनों में गेमिंग सबसे लोकप्रिय माध्यम है आरती, और थोड़ी देर का खेल मन को ताजगी देता है। पर लेकिन जब यही मनोरंजन आदत और फिर लत बन जाए तो ये गेमिंग का दलदल ये बन जाता है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे फंसता ही चला जाता है।
1: और इस गेमिंग की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जो बच्चे हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े क्राइम कर दिए इन गेमिंग में के चक्कर में फंस के। तो अपने माता पिता या किसी से रिश्ते में भी जो भी उनके अपने हैं उनको भी वो नहीं समझते, सिर्फ गेम के अंदर इतने ज्यादा वो लग जाते हैं कि वो कितने बड़े बड़े क्राइम कर जाते हैं। और साथ ही बहुत बड़े अपने जो

0: जो माँ बाप की जो कमाई होती है उसको भी गेम के चक्कर में, वो गेम को खरीदने के चक्कर में वो भी पूरा गंवा देते हैं।
1: यानी कहने का मतलब है कि वो ये जो दलदल है इसमें फंसने से हमने अपने बच्चों को बचाना है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इस बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल बच्चे दिन रात मोबाइल गेम्स में लगे रहते, पढ़ाई और बाकी ज़रूरी चीज़ों से उनका ध्यान हटता जा रहा है। मेरी बेटी ने अभी अभी 10वीं के एग्ज़ाम दिए और उनकी छुट्टियाँ चल रही है। आजकल उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि मम्मा मुझे गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए। सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि जो बच्चा अभी 11वीं में जाने वाला है उसे इस उम्र में गेमिंग के फ़ोन की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। फिर मुझे अपना समय याद आता है कि हमारे समय में तो मोबाइल दूर की बात थी, घर में सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन होता था। मेरे पिताजी तो इतना डांटते थे कि किसी से एक मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन आज के बच्चों की दुनिया ही बदल गई है, उन्हें बस गेम खेलना है। तकनीक अच्छी है लेकिन उसका सही और सीमित उपयोग बहुत ज़रूरी होता है, वरना धीरे धीरे बच्चे गेमिंग की ऐसी आदत में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गेमिंग का दलदल ऐसा खतरनाक भंवर है जिसमें व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ गेमिंग जो है वो मनोरंजन नहीं एक मानसिक बीमारी बन जाती है जो मकड़ी के जाल से भी बदतर जाल है। इसमें फंसने वाला अपने करियर, सेहत और पैसों से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। थोड़ा मुनाफा होने के बाद ज्यादा मुनाफे के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में देर नहीं लगता।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि गेमिंग के दलदल एक टाइप का नशा है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति वीडियो गेम, मोबाइल गेम या ऑनलाइन गेम खेलने का इस हद तक आदि हो जाता है कि वो अपनी असल जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और सेहत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने लगता है। यह दलदल की तरह इसलिए है क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन लगता है लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति इसमें ऐसा फंसता जाता है कि चाहकर भी बाहर निकल पाता। सोशल मीडिया, समाचार पत्र में आए दिन ये खबरें पढ़ती हूँ कि ऐसा नहीं, कम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डिग्रीधारी सारे लोग इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। और जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं तो उनका एक ही परिणाम होता है कि अपने को दुनिया से ख़त्म कर लेते हैं और उन्हें भुगतना पड़ता है कि परिवार को निराशा और पूरा परिवार जो है दुखी हो जाता है, ऐसा उन्होंने लिखा है।
0: बिल्कुल। और एक और जोश होता है हमारे, वो लिखते हैं कि जो गेमिंग का दलदल है उसमें जो यानी कि जो खेल कूद है और उसमें भी अरे ये गेम मतलब जो गेम है जो बाहर जब गेम खेलते हैं, जब आउटडोर गेम्स खेलते हैं घर के बाहर, तो वो गेम होते हैं उसको कहते हैं खेल। वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास को भी बढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे दिमाग के जो विकास होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बल्कि जबकि गेमिंग जो होता है उसमें स्क्रीन पर पूरे समय देखते रहने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है और मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ता है।
1: और ये जो गेमिंग जो है ना, जो होते हैं ना, इसमें ना हमेशा हम जीतते ही हैं। पानी में गिर जाए तो भी उन्हें कुछ पॉइंट से अगर हमारे पास है तो उससे हम फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो ये बच्चे और कुछ कुछ बच्चे तो वो वीडियो गेम देख के वैसे ही रास्ते पर भी उसी तरह से कार वगैरह चलाते हैं, तो उसके साथ उनके जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी बहुत खतरा होता है। एक हमारे साथी ने लिखा है दीपा, सॉरी
0: जी कोई नहीं,
1: समय सीमा निर्धारित करें, गेम खेलने के लिए अलार्म लगाएं या माता पिता दोस्तों की मदद से एक निश्चित समय तय करें, नई आदतें अपनाएं, ऊब से बचने के लिए कोई नया शौक पाले, व्यायाम करिए या किताबें पढ़े।
0: बिल्कुल। और एक कुछ श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के जो बच्चे जो गेम में लगे रहते हैं, उसमें कंप्यूटर गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं, वो वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम होने लगता है और शुरुआत में ये गेम मनोरंजन और तनाव दूर करने का साधन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आदत गेमिंग का दलदल बन जाता है जिससे निकलना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति गेम खेलने की लत में इतना डूब जाता है कि वो अपनी पढ़ाई, काम, परिवार और सामाजिक जीवन को नज़रअंदाज करने लगता है, तो ये आदत धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगती है। और याद रखिए, गेम्स खेलना बुरा नहीं है लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। पढ़ाई, खेल कूद और परिवार के समय के साथ गेमिंग को सीमित रखिए ताकि हम इस दलदल में ना फंसे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सके।
1: और अब क्या करें,
0: एक गीत सुने,
1: सुनते हैं गीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलना तो समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: भारती एक साथी लिखते हैं कि आजकल गेम खेलने की लोगों में लत सी लगी है। लोग देर रात तक जागकर मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलते हैं। कई बार तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, ना तो खाने की चिंता होती है, ना उन्हें कुछ काम की चिंता होती है। कुछ ऐसे गेम तो उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिसके कारण लोग अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं।
1: बहुत से ऐसे गेम आ गए खतरनाक
0: जी।
1: और साथ ही एक श्रोता जी लिखते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऑडियो या ऑनलाइन गेमिंग में इतना उलझ जाता है कि उसका अपनी दैनिक दिनचर्या, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर से नियंत्रण हट जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे आधिकारिक तौर पर गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में वर्गीकृत किया है।
0: और वैसे आरती ऐसी बात है कि ये जो मोबाइल गेम है, या फिर मोबाइल कह लीजिए, लैपटॉप कह लीजिए, या फिर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनमें अगर वाईफाई ना हो, इनमें अगर नेट ना हो, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है।
1: सही बात है। फिर हम एकदम फोन लेके बैठे रहते हैं कि क्या करें इस डिब्बे काम।
0: नहीं नहीं नहीं, पर अगर हमें बहुत ऑफिशियल काम करना है, हमें अगर कुछ काम करना है, तो बात समझ सकते हैं। पर अगर हमें सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है कि हम पढ़ना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, परिवार के साथ बैठना भूल रहे हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी मनोरंजन का साधन होना, वो सिर्फ सीमित मात्रा तक,
1: वो मनोरंजन तक ही रहना चाहिए, बाकी रिश्तों के बीच में या हमारे स्वास्थ्य के बीच में उसको नहीं आना चाहिए
0: जी। और अब वाईफाई की रफ्तार अगर धीमी हो जाए तो क्या करना चाहिए?
1: जिंदगी की रफ्तार, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की रफ्तार जब वो धीमी हो गई,
0: धीमी हो गई,
1: क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत जरूरी काम होते हैं, क्योंकि हमें उसको करना होता है, लिखना होता है या कुछ हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी चीजें देखनी है, तो आजकल तो न्यूज भी आप मोबाइल पे देख सकते हैं, कहीं बाहर हैं तो हमें किसी कुछ जरूरी देखना है, तो वो अगर नेट नहीं सही से चल रहा है, या हम अपने जैसे कि हम लोग जब देखते हैं, सब पूरी फैमिली जो होती है, अगर पूरी फैमिली ले रखी है उसने वाईफाई से चला रहे हैं, तो उसकी रफ्तार अच्छी होनी जरूरी है। तो कभी कभी ये होता है ना, कुछ चीजों को हम सावधानियां करें तो उससे हम उसकी रफ्तार को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि राउटर को अगर हम सिर्फ बंद करके 2 मिनट बाद उसको स्टार्ट करें तो उससे भी स्पीड बेहतर हो जाती है।
0: यानी जो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप उपयोग में नहीं हो, उन्हें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कमजोर पासवर्ड होने पर भी लोग जो है नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे स्पीड,
1: कोई आपके घर के सामने से जा रहा है, निकल रहा है, थोड़ी दूर तक है, तो वो आपके नेट का आसानी से उपयोग कर सकते, तो वहीं खड़े होकर अपना उपयोग करता रहेगा, लेकिन आपकी वाईफाई की जो स्पीड है वो धीमी हो जाएगी।
0: साथ ही पुराने राउटर नई तकनीक के अनुसार सही गति नहीं दे पाते, जरूरत पड़ने पर नया राउटर ले। ऑनलाइन पढ़ाई के समय वीडियो डाउनलोड या भारी गेमिंग से बचे, ताकि इंटरनेट की गति स्थिर बनी रहे। फोन में चल रहे उन एप्स को बंद करें जो बैकग्राउंड में डेटा जैसे ऑटो अपडेट या सिंक का उपयोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं ना, जितने भी पेजेस, उनको आप बंद करेंगे ना, तो फिर उसकी आपके फोन की स्पीड पे बहुत असर पड़ेगा।
0: यानी हमने अभी खोला फेसबुक, फिर थोड़ी देर में खोला व्हाट्सएप, फिर उसके बाद में हम चले गए यूट्यूब पे, तो अगर सारे एप्स खुले हुए हैं, अगर हम इस्तेमाल तो सिर्फ एक ही का करेंगे की टाइम, तो सारे अगर एप्स खुले रहेंगे तो भी हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है,
1: तो आप उसका भी ध्यान रखें। और साथ ही थोड़ी सावधानी और है, जैसे कि अपना जैसे कि अगर जो आपका राउटर है वो घर के बीचों बीच में और ऊंची जगह पर होना चाहिए, और साथ ही जो मोटी दीवार और माइक्रोवेव जैसे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी मत रखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पास एकदम से आपने रख दिया उसे पीछे, तो उसका जो सिग्नल है वो सिग्नल तोड़ता है, तो उस वजह से भी आपका स्पीड धीमी हो जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग करके रखें और थोड़ा ऊंचा ही रखें उसे, ऊंची जगह पर ही लगाएं, जैसे कि और बाकी उपकरण उसके आसपास नहीं होंगे तो बहुत बढ़िया स्पीड मिलेगी आपको।
0: और राउटर का जो एंटीना होता है उसे भी अच्छे से सेट करें, यदि 2 एंटीना है तो एक को वर्टिकल यानी खड़ा रखें और दूसरा एंटीना को हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा रखें, यह सिग्नल का दायरा बढ़ा देता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही एक है ना, फ्रीक्वेंसी के बैंड बदलते रहना चाहिए हमें, कि जो तेज फ्रीक्वेंसी का राउटर हमें लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, उससे क्योंकि अगर ज्यादा फोन चलाने हैं उसको, उससे आपको कंप्यूटर वगैरह ज्यादा चीजें चलानी है, तो आप उसी हिसाब से आप लीजिए अपना राउटर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी चल सके वाईफाई, और उसकी स्पीड भी अच्छी रहे। और
0: अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो अब हम बात करते हैं वही जो हम बात कर रहे थे, यानी कि राउटर की। तो जैसे कि बताया कि हमने कि आप राउटर को बंद करें और फिर दोबारा चालू करें, तो उससे ये उसकी जो मेमोरी होती है उसको साफ़ करता है, और साथ ही राउटर की जगह को भी बदलें। या जैसे कि हमने बताया था कि आप उसको EMI श्रोता लेके भेज रहे हैं, उसको घर के बीच में रखें और इसे ऊंचाई पर स्थापित करें, और कई सारी बाधाओं से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उसको दूर रखें, और अनचाहे डिवाइस जो भी रखें उसके आसपास उनको हटा दीजिए, और वाईफाई का पासवर्ड बदलें और ताकि और कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। साथ ही बैकग्राउंड लोड जो डाउनलोडिंग बंद करें। ये वही चीज़ें जो हैं जो हमने अभी बताई, वही हमारे श्रोता ने भी लिख कर भेजा है। तो एक और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि धीमी वाईफाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे आसान और असरदार तरीका है अपने राउटर को रीस्टार्ट करना, और इसके अलावा वही उनका कि ऊंची जगह पर लगाने से भी इसकी स्पीड बेहतर होती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं आरती कि ज़्यादा गेम खेलने से मेरा भी स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा था, मुझे भी कंप्यूटर गेम की लत लग गई थी लेकिन अब छूट गई है। क्या बात है। तो बधाई हो।
0: बिल्कुल बधाई हो आपको अपने, क्योंकि गेम की लत लग तो लग जाती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: जी
0: आपने उस चीज़ को छोड़ा, बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि देर रात तक गेम खेलने से नींद का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है, और

0: रहे हैं, हमें
1: बिल्कुल
0: कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन टेक्नोलॉजी की बदौलत, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके जो नुकसान है उससे हमें बचना चाहिए। और अब क्या करना चाहिए हमें,
1: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: तो आरती, आज की मुलाकात
1: आज की मुलाकात बस इतनी
0: इतनी, और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुँचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए हम इतनी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, तो इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बचता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: ये मैडम? खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास और एक अम्बावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी।
0: जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: वाह, तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है।
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी,
0: है ना,
1: बहुत अच्छा लगता।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: पता ही है कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर इधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें। अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
1: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं।
0: हाँ।
1: और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से
0: हैं,
1: आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं, क्यों?
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा सिलाई करते हैं, घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में
0: भाई, मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूं दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से, कट फट जाती है। अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के पंकज सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासागसम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा ये उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा, एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ, सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए, तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002462286702888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM 103.4 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल से अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए, ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। आज वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1,659 किलोमीटर से अधिक है। ये हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 को संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। बैठक के दौरान रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार ग्युन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah formally submitted his resignation today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Governor's Secretary in Bengaluru. Mr. Siddaramaiah said he requested the Governor to invite the Chief Minister designate D.K. Shivakumar to assume office, as his government enjoys an absolute majority in the Assembly with the support of over 136 MLAs. The Chief Minister designate, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar, is one of the senior leaders of the Karnataka Congress. He informed that the High Command had offered him a Rajya Sabha seat, which he added he had humbly refused. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Tests undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examination will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that the admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA. cuet.nta.nic.in. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. Addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth Rs 340 crore in the Gandhinagar Lok Sabha constituency of Gujarat today, Mr. Shah emphasized that the government is committed to securing the borders and eradicating illegal immigration in the country.
3: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
4: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
2: President Draupadi Murmu has urged the police force to become more citizen-centric and sensitive while dealing with the vulnerable sections, especially women, the poor and children. President Murmu was speaking after conferring the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police during Alankaran Parade held in Gangtok this morning. She appreciated the role of the Sikkim Police in maintaining law and order and in disaster management.
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए. साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही. इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बनाना होगा.
2: In a significant development for wildlife conservation in Gujarat and Kutch, four cheetahs from Madhya Pradesh will be relocated to the Banni grasslands in Kutch. The National Tiger Conservation Authority, NTCA, and the Cheetah Steering Committee have approved the translocation of two male and two female African cheetahs currently rehabilitated in Madhya Pradesh to the Banni grassland ecosystem. With this move, Gujarat is set to become the second home for cheetahs in India after the Kuno National Park in Madhya Pradesh. The festival of sacrifice, Eid al-Adha or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. Eid al-Adha is celebrated to commemorate the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his only son in obedience of God's command. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. India and China have reviewed the situation in border areas and expressed satisfaction with the progress made in maintaining peace and tranquility. The meeting was held during 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held in Beijing yesterday. The two sides discussed issues pertaining to delimitation, border management, mechanism building and cross-border cooperation. And in badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Satvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krusto, all advancing to the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा मंच। युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ।

तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। युवा मंच कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विज्ञान जगत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे जमी वाटर आइस के मजबूत संकेत खोजे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य के मानव मिशनों में इससे पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन तैयार किया जा सकता है। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक जेम्स हैंसन ने चेतावनी दी है कि 2026 अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन सकता है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और संभावित सुपर एल नीनो को मुख्य कारण माना जा रहा है। और भी बात करेंगे विज्ञान जगत में, लेकिन पहले सुनते हैं गीत।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा। हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत में। वैज्ञानिकों ने हंता वायरस के इंसान से इंसान तक फैलने के संकेत पाए हैं। एक क्रूज शिप पर संक्रमण के मामलों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स भविष्य में डार्क मैटर की खोज का नया तरीका बन सकती हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने में मदद करेगा। नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मैविन मिशन ने मंगल ग्रह के वातावरण में दुर्लभ ज्वान वॉर्फ इफेक्ट देखा है, जिससे पता चलता है कि मंगल का ऊपरी वातावरण पृथ्वी की तरह चुंबकीय प्रभावों से बदल रहा है।

0: सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: तो युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम बात कर रहे हैं आज विज्ञान जगत पर। आज रात नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन में कई शानदार चीजें दिखाई देंगी, खासकर अगर आसमान साफ हो और आप शहर की तेज रोशनी से थोड़ी दूर होंगे तो आज का चांद लगभग पूरा गोल दिखाई देगा। ये बहुत चमकीला रहेगा। दक्षिण पूर्व दिशा में चमकीला लाल तारा दिखाई देगा। इसे स्कॉर्पियन तारामंडल का दिल भी कहा जाता है। आज चांद इसके पास दिखाई देगा। सूर्यास्त के बाद पश्चिम दिशा में दो बहुत चमकीली तारों जैसी चीजें दिखेंगी। ये वास्तव में ग्रह हैं। कौन से? वीनस और जुपिटर। वीनस सबसे चमकीला होता है और वीनस के ऊपर पास में ही जुपिटर होता है। ये दोनों अगले दो दिनों में और करीब आते दिखेंगे और जून की शुरुआत में शानदार कंजंक्शन बनाएंगे। अगर आसमान साफ हो तो आप ये तारामंडल देख सकते हैं, स्कॉर्पियस, लिब्रा, अर्सा मेजर, लियो। और इसका सबसे अच्छा समय रहेगा शाम 7:30 बजे से रात 11 बजे तक का। तो विज्ञान जगत की जानकारी में आज बस इतना ही। सुनते हैं एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 7:10 पर, और मौजंग राइंदिया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम आप सुनते हैं सबरस कार्यक्रम रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाई जाएंगी गजलें। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 7:45 पर और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, शाम 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम की 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो 3 बजे तक चला। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की 1276 पंचायतों में

0: वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आज रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच 30 मई को तीसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज दोपहर 3 बजे सक्रिय चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर सकेंगे। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। शिमला जिले के रोहड़ू विकासखंड की ब्रासली पंचायत की 110 वर्षीय सुरतु देवी, बिलासपुर जिला की कसारू पंचायत की 108 वर्षीय रूपा देवी, दकड़ी पंचायत की 107 वर्षीय मनभरु देवी, रोहड़ू क्षेत्र की दिउदी मायला पंचायत की 107 वर्षीय बाला देवी, बिलासपुर जिले की हरनोड़ा पंचायत की 106 वर्षीय संतराम, नूरपुर विकासखंड की पंजेड़ा पंचायत की 105 वर्षीय बाबूराम, बिलासपुर की भलसीणा पंचायत की 100 वर्षीय नारायण देवी और शिमला जिला की कोहलू जुबड़ पंचायत की 98 वर्षीय चम्मी देवी स्वयं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची। आज मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डाले। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। कुल्लू जिला की लगघाटी की बड़ई बाग बीज सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक करण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कर्ण नंदा ने कहा कि मुख्यमंत्री का नेरवा दौरा और घोषणाएं चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले में संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच करवाने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आज धर्मशाला में आरंभ हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा शेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य है भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
1: तो हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश है। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, भारत का एक विजडम हम लोग अभी तक उसको संभाल के रखा है। तो ये सब समझने के लिए अभी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हमारे सोच ये है कि अगर फंडिंग ज्यादा तो हम लोग और ज्यादा कर सकें, तो भारत के दूसरे दूसरे सिटीज में कर सकें।
0: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव को भारत और तिब्बत की संस्कृति के संगम का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी तिब्बती संस्कृति को नजदीक से समझने का मौका मिलेगा।
2: भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है। हम लोग यहाँ चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, एक समाज की तरह साथ रहते हैं और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी एफएम 103.7
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सरगम का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है प्यार झुकता नहीं, आवाज़ें लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये गीत। अगला गीत सुनवाने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹199 डाउन पेमेंट एंड ₹199 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹199 डाउन पेमेंट एंड ₹199 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। पारसमणि फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

पारसमणि फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत। फरार फिल्म का ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत लव इन टोक्यो। इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: जी हाँ श्रोताओं, ज़रूर कल फिर इसी टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे, और अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति

0: की वेगनार स्टार्टिंग एट ₹4.42 lakhs ओनली
1: विद ₹1999 डाउन पेमेंट एंड ₹1999 ईएमआई। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार गीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राइंडियां।

0: डब्बी होंदी ना तिल नाली
1: बिल्कुल,
0: ते जेलू से खाली ते होई जांदियां ना कने आंदे चुल्ले आले पचोले पे पेइयां होंदियां ते से जड़े जदा जड़ा खोल ना जिस तिल ना पाइयां होंदियां ना ते अंदाजन 2.5 ग्राम ते जेड़ी से दवाई आई जांदी है
1: बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: कने उपचार किया करना एक तो हाँ जिया कोई कोई बर्तन वगैरह ले लेना जिदा कि उपरे दा मुंह थोड़ा बंद हो गया ना
1: बिल्कुल कने हाँ। अगर इस कमे ताई तो हाँ अगर मिट्टी दा जेड़ा कड़ा होंदा हने कड़ोलू होंदे अगर सह ले लैन तां सह बड़ी अच्छी गल्ल
0: कुछ होर भी चली जाना जिया प्लास्टिक दी बड़ी शाल कड़ोलियां आई हैं या स्टील दा कोई बर्तन है बस ये ख्याल रखना कि उदा मुंह उपरे दा जेड़ा सा थोड़ा बंद होवे
1: बिल्कुल
0: जिया गागरा हाई होवे ना उसके बाद जिया तुहां दस्सिया 1 किलो बीज परता दी जितना कि तुहां बीज जिया 3 किलो बीज बिच पाई दिया उतनी तो हाँ मात्रा दवाई दी पाई दिया
1: बढ़ाई लिया
0: उसके बाद ऊपर तीसरी बार एक कपड़ा बन लेना करना अच्छी तरह तीसरी जड़ा सा छलकाना ता ना
1: फेरना ये हाँ।
0: छलकाएगी तुसी अच्छी तरह तुसी घुमाई फराएगी थोड़ी देर तुहां तुसी थोड़ा शांत रहना दिया ताकि जड़ी दुआ उपर उठी होनी जिन्ना बैठी है ना उसके बाद तुहां तुसी जड़ा सा कपड़े हटाई के बर्तन खाली कर लिया ना
1: जी
0: बस इसे विधि करना तुहां एक बिल्कुल आरामदायक जड़ा सा अच्छा यानी कि बीज जड़ा सा उपचार कर सकते हैं
1: बिल्कुल कने इसदे सोगी सोगी जियां हड़ी प्रमुख फसल एक होर पाऊ हड़े किसान साथी बड़ी अजकल लगांदे फसल छलियां दी फसल तां दिखा जी बिल्कुल उपयुक्त टाइम है इस वक्त तुहां जड़ा सा मक्की दी बिजाई भी जड़ा सा तुहां बिल्कुल टाइम रहते कर सकदे कने मक्की दी जालू भी बिजाई करनी है तां एक ध्यान रखना तुहां अगर हो सके तां छट्टा विधि ते थोड़ा जिहा परहेज करना है क्योंकि जालू भी तुहां छट्टा लगांदे ने तां दिखा जी एक तां बी ज़्यादा पई जांदा पट्टिए च कने तुहां जो ए कुथी ज़्यादा पौदा कुथी घट पौदा तां तिस ते क्या होंदा कि पौध भी जालू अग्गे निकलदी अगर कणियां होई जांगियां तुहां जो पुटना पौनी है कने चंगियां होई जांगियां तां तुहाड़ी पट्टी खाली रहनी तां इसदा ए है कि अगर तुहां केरा विधि ने तिहा छलिए लगान तां दिखा पौधे दी पौधे ते पौध दी दूरी कने क्यारी ते क्यारी किसी भी प्रकार की कोई भी दूरी जड़ा सा उपयुक्त रहती है कने अगे जाए के फसल तो जो बड़ी अच्छी रही क्योंकि झख नेरी अगे बरखा बरसात सब कुछ होना तिहा ते अगर तुहां अपनी फसल बचानी है तो यही सावधानी रखी सकते कि तिहा ओ बने ही वरी है थोड़ा जहाँ तुहां थोड़ी देर ज्यादा मेहनत कर लें
0: बिल्कुल हाँ जी रसीलू भाई जी दिखा केरा विधि जी बड़ी एक छैल गल है कि दिखा अजकल बीज भी जो काफी महंगे मिला करते हैं तो बीज की सही मात्रा जी केरा विधि लगनी है हालांकि यह है कि थोड़ा समय तो इस लगी जाता लेकिन बचत होंगी कने बिल्कुल बंपर फसल जड़ी सा पैदावार दिंदी है
1: बिल्कुल
0: कने हुण अहां भी जड़ा सा दिखा भी जलो अहां गल्लां वेही गए ना तो हाँ जो किसान साथियों का भी जड़ा सा ख्याल जड़ा सा नहीं रहा कि जड़ा सा तिने लोक गीत भी अहां सुनाना है ना
1: बिल्कुल तो सुन दे कुछ एक सने हाँ जी पीढ़ी ते चल दे लोक गीत दी तरह
0: जी।
2: मैं हूं एचआईवी वायरस नाम तो सुना ही होगा मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
4: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
3: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगना स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली
4: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: जी भाऊ, सुनिया अहां ये लोक गीत कन्नै आशा करदे के सारे जो भाई पसंद भी आया होना। कन्नै दिखा जी, लोक गीत ते बाद एक बारी फिर ते चलना अहां अपनी जानकारी दी तरफ।
1: हाँ जी
0: तां
1: हाँ
0: भाऊ, क्या जानकारी है अगली सांझ
1: जी? जानकारी जड़ा सर सिल्लू भाई इंया ना कि दिखा अहां जड़ा सा इन्हें दिन दिखा गर्मियों च अहां दिखे भी है कन्नै हल्ली तक इतना ज्यादा नहीं है, पर इ'यां कुति कुति अंज सुनने होवा दा कन्नै तित्थु कुति जंगलां बिच्च जेह्ड़ी सै भीषण जेह्ड़ी सै आगजनी होवा करदी है ना। ते एह् जेह्ड़ा थोड़ा जेहा जेह्ड़ा समय है ना कि दिक्खा धुप्पा बड़ियां तेज पवा करदियां न, कन्नै जंगल इस टाइम जियां अहां बोली ने कि इक बारूद बनी चुके होंदे न।
0: बिल्कुल, कन्नै दिक्खा जी जंगला ही तां क्या गल करनी अहां, अहां अपने आड़ा दुआड़ा ही दिक्खा तो हां, अगर हाड़े घरे दा आड़ा दुआड़ा थोड़ा जेहा कूड़ा भी पिया होगा ना भाऊ, असें भी संजय जेहड़ा सा पापड़ बनी जांदा। कन्नै सही साहब जेहड़ा सा जंगला च, तां जंगला च तां होर घा पत्तरा जेहड़ा सा होंदा, सुखे छोटे मोटे पेड़ पौधे भी होंदे।
1: हां, तां बना जो अग्गी ते कियां बचाई पान, इसी बारी जड़ी से अहां गल करनी है टियाले दे माध्यम ते। हर दिन जड़ा सा अहां ए सारे ने जड़ा सा दो हाथ जोड़ी के प्रार्थना भी करते हैं कि आग ते जड़ा सा जी कियां अहां बचाव अपने पर्यावरण दा, अपने आस पड़ोस दा करना, इसियो इस तरह जो मिली के जड़ा सा आपू प्रयास करना पौने।
0: बिल्कुल, कन्नै दिखा जी साझा प्रयास ही जड़ा सा सफल होंदा। कन्नै दिखा जी ए जंगल जड़ा सा हाड़ी तुहाड़ी किलियां दी तां विरासत नहीं है, ये सारे संसार की विरासत है, इसियो अहां बोली सकते क्योंकि पूरा जड़ा हाड़ा पर्यावरण है पूरा ही इस पेड़ पौधे

0: पर ही निर्भर करता क्या कि जित्थू जित्थू दिख दे यहाँ के भाई पेड़ पौधे नहीं हैं तो तित्थू जड़ ऐसा जीवन भी संभव नहीं है।
1: नहीं है कहना अगर अहाँ गल करिए ना एक एक तरोताजा अगर अहाँ जी सह भी लेंदे हैं ना तो सह अगर गल चले तो ना आंदा अहाँ दे हिमाचल का ना
0: बिल्कुल
1: कि भाई ठंडा इलाका कहना पेड़ पौधे घाट घाटियां वादियां पूरी है ना पूरे पहाड़ पर्वत तो दिखा इो दे जड़ा सा एक शांत जिसी बोलते अहाँ दी जड़े इलाका अहाँ दा हिमाचल जिला कांगड़ा कहना इतनी इतू हरियाली है चौं तरफा कि दिखने का जड़ा सा नज़ारा लगी जाता।
0: बिल्कुल नज़ारा लगी जाता कन्नै दिखा जी दूरे दूरे ते लोग जेड़ा सा इत्थे इहदी वास्ते आउंदे के मन दी शुद्धिकरण होइया कन्नै तन दा शुद्धिकरण होइया।
1: बिल्कुल
0: पर दिखा जी हुण गल कीती हां अग दी तां अग पाऊ इयां तां लगनी नहीं
1: हाँ
0: हना जी। ए नहीं है कि कुदरती चीज पाई अग्गी दा गोला आया कन्नै पई है कुद के कन्नै अग लगी पई ऐसा तां होना नहीं है। ये सारिया चीज़ा जेड़ा सा साढ़े कुछ एक शरारती तत्व लोग ही इन चीज़ें जेड़ा सा
1: जी
0: करते है ना
1: फैलांदे ना जी हाँ
0: फैलाते। तो दिखा जी
1: हाँ
0: अहाँ उन्होंने जो भी बोलना चाहते जड़ा कि डेरी मानसिकता दे रोगी हैं
1: हाँ
0: कि भाई सरकार दी तरफ ते जड़ा सा काफ़ी बड़ी भारी बड़ी एक सह बोलते ना किसी जुर्माने के तौर पर भी कहना सज़ा का प्रावधान भी सरकार रखे कि कोई भी अगर ऐसा काम करता पाया जाता है या पकड़िया जाता है या कोई भी किसी भी प्रकार की अजकल तो दिखा जी फोनों का जमाना चलिया ना जी। लोग जगह जगह जड़ा सा तुहाड़ियां मूवियां बनाई लै दे कैसी दी है भी
1: हाँ
0: कोई खरा काम करा तमी जे बुरा करा दे
1: बिल्कुल
0: तमी।
1: बिल्कुल
0: तो अगर कोई ऐसा पकड़ा बिच आई जाता है बंदा है ना
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: क्योंकि जगह जगह कैमरे भी लगे हो तो दिखा जी एक तो पैसा तो चलो आए
1: हाँ
0: आंदा जांदा रहिंदा पर जेड़ा जे जेल होनी ना जी तो
1: हाँ
0: सह बड़ी भारी दुखदाई होनी। तो
1: हाँ
0: इन सारिया चीज़ें वो भाई ध्यान बिच रखी के ही अगर कुणी देदा कुछ सोचे भी होगा तो सह भी ध्यान बिच रखे कि अगें जेड़ा अंजाम तिदा बड़ा भारी बुरा भी हो सकता है
1: हाँ
0: ना जी।
1: नज़र जड़ा सा रखा ग्राए बिच
0: बिल्कुल
1: जड़ा सा जिन्हें मुंडू है ना बुजुर्गां जो दे जड़ा सा सलाह लेके कन्नै ऐसा अगर कोई करदा जड़ा सा अगर पाया जांदा है तो उसी पर जड़ा सा पूरी कार्रवाई भी जड़ी से करवाना है ना
0: बिल्कुल
1: कन्नै बना जो जड़ा सा कियां अहां बचाना है तो अहां तुहां जबर दसी ता कि अहां आपस च इकट्ठे होई गए अगर अहां चलो प्रयास कर गए तो अहां अपने इलाकें जो जड़ा सा बिल्कुल राख होने से बचाई सकदे हैं ना।
0: बिल्कुल कन्नै हुण आने वाला टाइम बरसाता दा है ना भाऊ
1: हाँ
0: तां अहां अपनी तरफ ते होर भी प्रयास कर सकते कि ज़्यादा तो ज़्यादा पेड़ पौधे अहाँ लगान जितू हाँ जो लगता है कि खाली जमीन है ना जी
1: जी
0: नदी
1: जी
0: नालियाँ के कंडा हो चाहे पहाड़ियाँ हुई जे किसी भी प्रकार
1: हाँ
0: की है ना जी। अगर अहाँ छोटी दे पहल भी करन दे दी तो बहू कुतू की गल कुतू जाई रहनी।
1: जी हाँ जी बाकी भी जड़ी से गलबात हाँ करनी है लेकिन पहले सुन लेंदे ना ना लोक गीत है ना कहना संदेश।
0: जी।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनार स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली
3: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: जी तो किसान साथी अहाँ गल करा कर दे हे पर्यावरण दी। तो जियाँ कि अहाँ पहले भी तुहाने गलबात जड़ी से कीती है कि पर्यावरण अहाँ तुहां दा ये सांझा बर्तन है कहना हाँ जो सारे जो मिली के प्रयास करना पौने ताई अहाँ पर्यावरण जो बचाने ताइयाँ कुछ ना कुछ जड़ा सा योगदान दे सकते हैं ना। देखा आग जनी जलू कुछ भी अहाँ दे आस पड़ोस जंगलों में या दूर पार कुछ होंगी है घड़ी दो घड़ी पलों करोड़ों की संपत्ति जली के बिजली से राख बनी जाती।
1: बिल्कुल
0: कई तरह के ऐसे जीव जंतु परिंदे जड़े सा जिन्हें कि अजकल दिखा जगह जगह अंडे दिते होंगे या बच्चे दिते होंगे ऐसिया ऐसिया दुर्लभ प्रजातियां भी अहाँ दे इलाकें ते खत्म होवा कर दी हैं। वजह यही है कि जड़ी अंधा धुंध जड़ी सा पेड़ों की कटाई कने ये जड़ी गर्मियों दिन जड़ी सा वणा विच अग लगा करती है।
1: बिल्कुल कन्नै हाँ दिखदे भी हैन कि जियां बरसाती दा गां समय होना तां कई प्रकार दे जीजू कंडू जेहड़ा सा घरां तरफ दौड़दे,
0: हाँ
1: तां दौड़ना भी तिन्हां दा जायज़ है कि दिखा जैलूं तुहाडे जंगल

0: कने पाऊ फिरी ते लड़ा हाँ छोड़ा दिया
1: विराम कर सुनना लोग गीत है ना।
0: जी जी
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
3: विद ₹199 डाउन पेमेंट एंड ₹199 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

इसी कन्या कार्यक्रम का समय इथु ही संपन्न होया। तकनीकी सहयोग आयोजिता विकास पठानिया ने कन्या प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम के जितेंद्र पाल सिंह उन अहां दुनिया दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारामैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारामैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की

0: सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah formally submitted his resignation today. Addressing media, he confirmed that the resignation letter was officially handed over to the Governor's Secretary in Bengaluru. Mr. Siddaramaiah said he requested the governor to invite the Chief Minister designate D.K. Shivakumar to assume office as his government enjoys an absolute majority in the assembly with the support of over 136 MLAs. He informed that the High Command had offered him a Rajya Sabha seat, which he added he had humbly refused. Saying that he is not interested in national politics, the outgoing Chief Minister said that he will continue to work for the people of the state. Siddaramaiah became the Chief Minister of Karnataka for the second time in May 2023 after the Congress secured victory in the assembly elections. He previously served as the Chief Minister from 2013 to 2018. He has the distinction of being the longest serving Chief Minister of the state, completing 8 years in 2 10-year. With his resignation, the long-drawn power tussle in the state has come to an end. Union Home and Corporation Minister Amit Shah has reiterated the government's firm commitment to identify and deport every illegal immigrant from the country. He was addressing a public rally after inaugurating and laying the foundation stone for various developmental projects worth 340 crore rupees in Gandhinagar Lok Sabha constituency today.
3: Our government's resolve is to identify and deport every single infiltrator from across the country. For this purpose, Prime Minister Narendra Modi ji has decided to constitute a demographic change committee. This high-powered committee will examine the causes behind the artificial demographic changes taking place across the country, suggest measures to address them, and also consider whether any new laws are required for this purpose. The demographic change committee will submit its report within 1 year, and we will work towards preventing artificial demographic changes.
1: Demographic change jo hai usko rokne ka hum kaam karenge.
2: Mr. Shah recalled the contributions of Veer Savarkar on the occasion of his birth anniversary. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid ul-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website nta-cuet.nta.nic.in. Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav held a high-level meeting with the AI Curriculum Task Force in New Delhi today. The meeting was a part of government's efforts to collaborate with the industry for a comprehensive overhaul of the artificial intelligence curriculum to better equip learners for emerging technological trends. The discussions during the meeting focused on strengthening industry-academia collaboration and aligning AI education with future technological requirements. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today released over 10,000 crore rupees to 12 states under the Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen PMAYG through video conferencing. These states include Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh. Speaking on the occasion, Mr. Chauhan said that 3 crore 91 lakh houses have already been accorded approval under Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen PMAYG. A great voice of Urdu literature has fallen silent forever. Famous poet and literary figure Bashir Badra passed away today in Bhopal, Madhya Pradesh. He was 91 years old. According to his family, he breathed his last at around 12 noon. He will be laid to rest at a cemetery near Bhopal Talkies at 7:30 this evening. Bashir Badra gave Urdu poetry a new identity. He wrote in simple, everyday language. His style was different from traditional poets. In badminton, India enjoyed an impressive day at the Singapore Open today with Lakshya Sen, PV Sindhu, the men's doubles pair of Chirag Shetty and Sattvik Sairaj Ranki Reddy, and the mixed doubles duo of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto all advancing to the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान बाणी सुना करते सारे किसान कने बागवान भाई भैन का एक बारी फिरी ते स्वागत कने अज टियाले पर मौजूद मैं यानी रसीलू राम कने मेरे सोगी किसान मित्र ता भाऊ तुहांजो भी राम राम
1: राम राम रसीलू भाई जी। एक बारी सारे जो फिरी ते जड़ा सह टियाले ते अहां दी दो हाथ जोड़ी के राम राम। जितने भी श्रोता किसान बागवान पशु पालक भाई अहां जो सुना कर देना ना
0: बिल्कुल
1: जी। तो कार्यक्रम मैं किसान वाणी कने अज दी जड़ी गलबात है जियां कि अहां दे सारे श्रोता जानते हैं कि हर दिन कोई ना कोई जानकारी अहां शुरुआत च सांझा करदे हैं। तो अज जड़ी अहां गल करनी है सह अहां करनी है प्राकृतिक खेती दे उपर है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा जी अहां बार बार टियाले दे माध्यम ने बोलते रहते कि जल भी तो हाँ प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना है तो दिखना है तो हाँ।

0: थोड़े खेत कने थोड़े कमाई जेड़ा कने
1: हाँ
0: थोड़ा उत्पादन जेड़ा ते च चौतरफा विकास तुहानू जेड़ा सा देखने को मिलना है। क्योंकि अहां बार बार बोलते रहेंगे कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती ही ऐसी है जिहे अपनाई के तुसां अपने खेत की जड़ा मिट्टी है तो इसका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखी सकते अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखी सकते कने सोगी सोगी पर्यावरण का जड़ा स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान जड़ा सा तो हाँ खूब रखी सकते।
1: जी हाँ जी देखा मैं रसेलू भाई जी खेत जितनिया तकनीकों वह दी ना
0: जी
1: तो कुछ हद तक तो ये जितनी भी जड़ी सह विज्ञानिक जड़ी सह नई नई तकनीक नई नई मशीनरी ही ये अहाँ के कमे जो आसान करने चाहिए मददगार ही
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दुए वह उतने अहाँ थोड़े हरामी भी बनते गए है ना।
0: देखा जी ये मशीनरी ऐसी चीज है ना जी
1: हाँ।
0: के ये हाड़िया एक सहायता दा एक ए है सहायता
1: हाँ,
0: करने ताई के
1: हाँ,
0: देखा जी जे तू तो हाँ जिस कमे इक्की दिन च करते हे उसी कमे तो हाँ अज इक्की घंटे बिच खत्म करी दे दे
1: बिल्कुल
0: ता
1: हाँ।
0: देखा जी ये तुहाड़े समय जो बचाने ताई है ना कि तुहानू जेड़ा तुहाड़े प्राकृतिक स्रोत हैं या फिर तुहाड़े डंगर बछू हैं तिन्हां ते दूर करने ताई है।
1: हाँ देखा ना ये जियां नूं बतरिया टाइम चल लिया ना
0: जी
1: तो इन दिन जलू देखा कितनी दांदा की गाहकी चलती ही अज जी 10 साल पहले की गल करिए ना
0: जी
1: तोपी के भी जड़े से जोड़िए टक्कर का दांद नहीं मिलता है ना
0: बिल्कुल
1: अहां तो जी नज़दीक इतू मटोर बिच या कुछ होर जी ऊना हुई या
0: रजोल हुई
1: हाँ जगह जगह बैला मंडियां लगदिया ही बाहर व्यापारी बैला लेके आते हैं ना कने अज दिखा जड़िया जड़े छोटे छोटे जड़े ट्रैक्टर आए छोटे हल बाहने आए पावर ब्रीडर तो दिखा क्या जमाना आए लगा कि एक ही बैले का कोई 100 रुपये देने भी तैयार नहीं है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा जी चलो इस चीज़ें अहाँ दिखा जी ज़्यादा नहीं बोली सकते क्योंकि बहू ये जड़ा आधुनिकीकरण जड़ा
1: हाँ,
0: है ना जी
1: हाँ जी
0: तिदा एक स्वरूप है पर दूजे नज़र ने अहाँ ये दिखा कि अगर हंजल कोई डंगर बछू ही नहीं होगा तो
1: हाँ
0: अहाँ अपनी पट्टियों मैल कूदा पाना
1: कूदा पाना देखा चलो हाँ बैलन खेती करते हैं ना
0: जी
1: तो जियाँ छोटे पावर ब्रीडर की गल हो करती था जियाँ ये जमीन है ये तो काफ़ी जियाँ बधिया खो दिंदा पूरे ढाके लगी जाते लेकिन जमीन जड़ से खुली रहती है ना
0: बिल्कुल
1: नमी बड़ी तौली उड़ती लेकिन जल हाँ बैला ना खेती करते देखा उससे बाद जल
0: चौंकड़ी
1: किसी पर
0: फेरनी हाँ
1: चौंकड़ी फेरनी जिसी हाँ बोलते ने मई
0: हाँ
1: देना रस्से
0: बिल्कुल
1: लगाई किसा जो ऊपर खड़ोई के
0: जी
1: तो जमीन बिल्कुल कितनी इं मुलायम करना दिखने भी इं बराबर लगती ही थाली है जी जी कुछ फर्श पाया हों ना तो इसते क्या होंगे हा फायदा कि जमीन की नमी जल धुप्पा बड़ी पौदियाँ तो कई कई दिन सलाबा जमीन का नहीं उड़ता है क्योंकि सह तिथि दबी दे
0: कने भाऊ मुझे तो हले भी याद है कि हाड़े थोड़े बुजुर्ग जालू दिकर पट्टियों च गोहा नहीं ना पवें तालू दिकर पट्टियां बांधे नहीं हे है ना कने अजकल का यह हिसाब है कि बगैर गोहा ही बोले खरी तो हो दी फसल है ना जी।
1: देखा
0: हाँ
1: जालू आपू अहां हाथ ना काम करते हे बैलां
0: जी
1: ना तो जियां तुहां बोलिया तो दसा देखा भाई चार चार पांच पांच हल देने हैं ना जियां हुण बतरिया टाइम है तो पहले अहां दूर दूर हल चलाना ताकि पानी जिहड़ा सा जमीना च खड़ोई जिहड़ी पहली वर्खा पौनी है कने खरपतवार सारे उगे हुण बाद च फिर से हल बाहना मिट्टी च मिलाने कने हुण तो अहां दिखदे कि एक बार ट्रैक्टर आला सदना कहना जैलू ट्रैक्टर आला आई गया तो अहां घड़िए बहा नज़र रखी होंगी कि इन्नी तो बड़ा टाइम लाई दिता ना।
0: हाँ कने दूई गल भई हले पाने ते 5-7 दिन पहले 10 दिन पहले स्प्रे कर दे दे है ना जी हल बाहने ते बाद फ्री ते स्प्रे हो जानी है ना जी घाए दी कीड़े मकोड़े दी जिसी भी किसी भी प्रकार दी तां दिखा जी ये सारियां चीज़ां जेड़ा ऐसा कुथी ना कुथी अगे जाई के हाड़िए तुहाड़िए सेहता पर ही विपरीत प्रभाव जेड़ा सै पा दी
1: पा
0: कने
1: दी
0: दिखा जी सै दिखा जी अहां टियाले पर किसान मित्र होर भी कई प्रकार दे किसानां ने गल्लां बातां करदे कने कई हड़े किसान इत्थों आते जेड़ा कि प्राकृतिक खेती कन्नै जुड़े हो
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तुहां सुनी होनी है सारे गल्लां के दिखा जी कितनी भारी तरक्की तिन्हां कीती हो कने उत्पादन जो अच्छे दाम पर भी सह जेड़ा सह बेचा दे
1: बेचा दे कहना देखा जी प्राकृतिक खेती कन्नै तैयार की गई जिस दिखा भी जियां हुण हाँ कणक निकाली है ना पिछे अपनी तो 6,000 रुपया जड़ा सा पर क्वांटल सरकार खरीदा करती है ना देखा इतने बढ़िया जड़े से पा जड़े से हाँ जो जड़े से चलो हाँ प्राकृतिक विधि कन्नै खेती करनी है ताई जड़े से मिली पाने तो रसीलू भाई जी हुण इ'यां करदे न बाकी दी गलबात भी जड़ी से अहां जारी रखनी है लेकिन पहले अहां सुनना एक जड़ा सा संदेश कन्नै फिर जड़ा सा एक अहां इसी विषय पर जड़े से एक सुननी है भेंट वार्ता।
0: बिल्कुल कहना दिखा जी किसान मित्र होर बड़ी देरी दे मिंजो बोला दे कि हाँ हरियाली कने खुशहाली जड़ा सै हरियाली ने खुशहाली होंगी तो अहां भी

0: किसान मित्र जी की तुहां जो पता ही है कि हर दिन अहां दा प्रयास रहंदा कि नोइयां ते नोइयां जानकारियां अहां तुहां तक पुजाइए। उसी कड़ी विच आज उन्नत जिन्हें कि हां किसान भी जेड़ा सा बोल सकदे हैं कने बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद बनाने दा जेड़ा सा काम करदे हैं करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम अजय ठाकुर है और मैं पंचरुखी ब्याड़ा से हूँ।
0: हाँ जी।
1: और हमारा यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हमने शुरुआत इसकी जो मैंने की थी इसकी मैंने शुरुआत की थी 2022 में।
0: हाँ जी।
1: जिसमें कि मैंने सीएम स्टार्टअप में वहाँ पे स्टार्टअप किया।
0: हाँ जी।
1: 2022 में फिर हमारा 2023 में ये जो प्लांट के रिगार्डिंग जो भी हमारा प्रोजेक्ट था ये सैंक्शन हुआ वर्ल्ड बैंक से।
0: अच्छा।
1: जिसमें कि हमें हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से फंडिंग भी हुई 30% सब्सिडी के साथ।
0: हाँ जी।
1: तो ये प्लांट हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन में आया लास्ट ईयर नवंबर।
0: अच्छा।
1: नवंबर 2024 में हमारा प्रोडक्शन में आया।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया बेस्ड खाद बनाते हैं जिसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाए जाते हैं
0: हाँ
1: उन्हीं बैक्टीरिया को हमने मिट्टी से उठा के हमने कल्चर किया, हमने लैब में तैयार किया उनको, उसके बाद हमने इसको कमर्शियली तैयार करके हमने एक कैरियर बेस्ड खाद बनाई। हमारे पास कैरियर बेस्ड खाद भी है और साथ में हमारे पास एक लिक्विड इसका लिक्विड फॉर्मुलेशन भी है।
0: जी अजय ठाकुर जी, तो जो खुद उत्ते प्रेरणा मिली की कुछ हटी के ऐसा काम किया जाए कि जैविक खादा है कुछ ऐसा बनाया जाए।
1: सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में मैंने स्टार्टअप लिया।
0: हाँ जी।
1: तो उससे पहले मैं सीएसआर आईएचबीटी में ही काम करता था 2018 से। मेरी एमएससी खत्म होने के बाद मैंने वहीं पे काम किया
0: जी।
1: तो 3-4 साल फिर मैंने इसी फील्ड में जब मैंने काम किया और जब हमने देखा कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और ये केमिकल जो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं
0: हाँ जी
1: उनके अगेंस्ट ये काफी अच्छा काम करता है और ये नेचुरल है।
0: हाँ जी।
1: जब ये नेचुरल है तो हमने सोचा कि ठीक है जब वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनिक की साइड में
0: हाँ जी
1: तो हम भी इसी साइड हम प्रयास कर सकते हैं कि ठीक है हम भी इसको ऑर्गेनिक की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं नेचुरल की।
0: हाँ जी।
1: तो फिर वहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया आया और एक हमारे एडवाइजर भी हैं डॉक्टर अपर्णा मैत्रापति, उन्होंने भी काफी मुझे वहां पे बूस्ट किया कि ठीक है आप वहां पे उस साइड। फिर हमने कमर्शियल साइड पे जाना चाहा इसमें। तो उससे पहले हमने अलग अलग जगह पे इसके ट्रायल कंडक्ट कराए, जैसे हमने इसमें केसर पे काम किया, हमने बहुत सारी सब्जियां हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं उनमें काम किया, या सेब है आजकल हिमाचल में सेब है तो हमने उसमें भी काम किया, काफी काम किया
0: जी।
1: तो रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। तो फिर हम उसके बाद फिर हम इसको कमर्शियल लेवल पे लेके गए
0: जी। अजय ठाकुर जी जी की गल कर दे ना जी शुरुआत जेड़ा जी तो हां किया किया जो जेड़ा से तैयार कर दे गोबर कुतुते लेना कितना इस टाइम लगना क्या क्या इस जेड़ी से विधि रहती है।
1: सर बेसिकली हमारा काम शुरू होता है इसका बैक्टीरिया से।
0: हाँ जी।
1: तो जो बैक्टीरिया है जितने भी हमारे रहते हैं उनको सबसे पहले हम लैब ग्रो करते हैं।
0: अच्छा।
1: लैब में ग्रो करने के बाद उसको हम फिर क्या करते हैं एक बड़े कंटेनर में उसको हम बोलते हैं फर्मेंटर।
0: हाँ जी।
1: तो फर्मेंटर का बेसिकली रोल होता है कि उसका टेम्परेचर जो है उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं 28 से 30 डिग्री।
0: अच्छा।
1: तो उस बड़े से कंटेनर में हम उसको बैक्टीरिया को जो लैब ग्रो किया है हमने उसको उसमें डालते हैं।
0: हाँ जी।
1: फिर उसको हम नेचुरली तरीके से उसको उसी में ग्रो कराते हैं।
0: हाँ जी।
1: बिना कोई केमिकल के।
0: अच्छा।
1: तो उसमें हम उसको ग्रो कराते हैं। तो ये उसका जो प्रोसेस है ये रहता है आपका 24 से 48 घंटे का।
0: हाँ जी।
1: तो 24 से 48 घंटे का जो ये समय रहता है इसमें जो बैक्टीरिया है ये बहुत अच्छे से मतलब अच्छी पॉपुलेशन में ग्रो हो जाता है।
0: हाँ जी।
1: तो जब ग्रो हो जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि हमारा जो कैरियर है हम उसको कैरियर बोलते हैं जिसको हम बैक्टीरिया को शिफ्ट करेंगे उसका जो घर है कुछ टाइम तक वो उसमें रहेगा।
0: हाँ जी।
1: तो उसको कैरियर बेस्ड कंसोर्टियम हम बोल सकते हैं।
0: हाँ जी।
1: तो उसमें हमारा जो कैरियर बेस्ड कंसोर्टियम इसमें हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं। कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया हमारा जो रहता है इसमें हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रेशियो में हमने रखे होते हैं उसमें।
0: हाँ जी।
1: तो एक हम उसको बोल सकते हैं जो कैरियर है उसमें ओवरऑल जो भी न्यूट्रिएंट जो भी उसको खाने के लिए चाहिए पौधे को।
0: हाँ जी।
1: वो हमने सब उसमें डाल के रखे होते हैं।
0: हाँ जी।
1: और साथ के साथ जब फिर उसको हम जो बैक्टीरिया हमारा सॉल्यूशन होता है उसको हम उसमें मिक्स कर देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जब वो मिक्स हो गया तो मिक्स होने के बाद क्या है कि एक तो उसको बैक्टीरिया को घर मिल गया कुछ टाइम के लिए, जब तक हम उसको मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक उसको हम उसमें रखते हैं।
0: जी।
1: तो फिर वो उसमें भी मल्टीप्लाई होता रहता है।
0: हाँ जी।
1: फिर क्या करेंगे कि जब वो उसको प्रॉपर मिक्स होने के बाद हम उसको पैकिंग कर देंगे एक आइसोलेटेड एरिया में हम उसको पैक करते हैं। जब उसको हमने पैक कर दिया तो वो फिर हमारा रेडी हो जाता है।
0: अच्छा।
1: तो रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको जब भी हमने उसको यूज करा है तो हम उसको मिट्टी में मिलाते हैं या तो जड़ों में डालते हैं या तो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं कि जमीन तैयार करने से पहले उसको ऐसे फेंक दिया खाद की तरह।
0: अच्छा।
1: और उसमें फिर हम उसको यूज करते
0: हैं। अच्छा, ये तो हम पैकिंग कर दे भी लिफाफे से कर दे।
1: पैकेजिंग है हमारी 1 kg की पैकेजिंग भी है और 25 kg पैकेजिंग भी रहती है।
0: अच्छा जी। हाँ, अगर कुनी अहां दे किसान साथियां ए या कोई होर भी जिया दिखा भी कुनी अगर खरीदना हो है ये तो क्या रेट रहंदा 1 किलो दा कितना करना 25 किलो दा कितना है।
1: सर देखो जो 1 kg का रेट है वो हमने रखा है 120 रुपीज।
0: हाँ जी
1: और जो बल्क में जिनको जाते हैं जैसे 25 रुपीज के जी, 25 kg का जो
0: हाँ
1: पैकेट
0: पच्ची हाँ
1: है
0: जी 25 किलो
1: वो हम
0: का
1: 65 रुपीज पर kg के हिसाब से देते हैं।
0: जी। ये तुहां दे जेड़े उत्पाद जन तुहां ये जैविक तैयार करदे हन ते कुतु कुतु जेड़ी कि तुहां बेचदे हन जी इसी एरिया च या कुती अगे भी है तुहां दा?
1: देखो सर हमारा फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कुछ एक पर्टिकुलर जगहों में है, जैसे पालमपुर है, जैसे कोई रिटेलर शॉप्स हैं उसमें हमने रखा, नर्सरीज में रखा है,
0: हाँ जी
1: पर शिमला अपर बेल्ट में जैसे जाएं तो आपको वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाए। तो हमारा ये रहता है कि जहाँ पे मतलब फसलें अच्छी हैं या किसान ज़्यादा उन्नत किसान है वहाँ पे,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: हम वहाँ पे देते हैं इसको।
0: अच्छा
1: और इसका प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका यूज़ कम करते हैं ये,
0: हाँ जी
1: उसका यूज़ कम कर देता है ये।
0: जी तो जी चलो तुहां ये जैविक खाद चलो तुहां तैयार करी थी तो इधर भी कोई नहीं एक्सपायरी डेट होती है
1: जी
0: कुछ
1: बिल्कुल,
0: कितना टाइम होता?
1: इसकी एक्सपायरी डेट है सर 12 महीने का सेल्फ लाइफ है इसका।
0: अच्छा
1: तो जैसे 12 महीने अगर मान के चलो कि अगर 12 महीने हो गए और किसी किसान ने नहीं यूज़ किया तो हमें वो वापस कर सकता है इसको,
0: अच्छा
1: तो हम वापस लेने के भी इसमें पूरा हम प्रावधान रखा हुआ
0: हाँ,
1: है हमने इसमें।
0: बशर्ते कि पैकेट खोल लेनी होगा ना।
1: जी बिल्कुल, अगर खुला भी है, अगर आपका यूज अगर आपने कर लिया है
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: ठीक है, अगर नहीं यूज किया है तो
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: हमें वो पैकेट सील्ड पैकेट हमें दे सकते हैं वापस।
0: अच्छा देखा ये भी वहाँ एक अच्छी गल जी दसी है कई बार जी किसान साथी नहीं कर ज्यादा समान आई जाता था व्यर्थ नहीं जाना वापिस भी जरा सह हो जाना है ना जल तो से वापिस ढाना था उसके बदले नया मिलना या थोड़े घट वध पैसे होने
1: नहीं,
0: थोड़ा?
1: उसके बजाय उतना उन्होंने वापिस किया उतना ही उनको वापिस पूरा मिलेगा वो विद
0: अच्छा
1: पैकेजिंग प्रॉपर।
0: हाँ जी
1: जी
0: जी तो अजय ठाकुर जी तुम्हारी तो जी ये प्रयोगशाला है इतने किन्ने बंदे काम करते तो हाँ सारे मिल के?
1: सर इसमें हमारे टोटल 3 बंदे हैं
0: हाँ
1: और
0: जी
1: इनडायरेक्ट फार्मर हमसे जुड़े हैं, 100 या 150 फार्मर हैं
0: अच्छा
1: जिनसे कि हम गोबर प्रिक्योर करते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा यानी कि इससे गोबर कोई गाय में आएगा या बैल दा कुछ ऐसा तो नहीं होता कि जड़ा
1: कुछ नहीं,
0: मर्जी?
1: हमें गोबर चाहिए वो भी ड्राई फॉर्म में, मतलब
0: अच्छा
1: जैसे उपले दे दो हमें,
0: हाँ जी
1: छोटे उपला दे दो, मतलब उपले का कैसे भी आप उपले का ड्राई फॉर्म में दे दो हमें,
0: हाँ जी
1: हम
0: सूखा
1: करेंगे
0: हाँ
1: उसको।
0: जी
1: हाँ जी,
0: भुरभुरी खाद बिल्कुल चाहिए ना?
1: नहीं नहीं नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: जी
1: जैसे हमें उपला बना दिया, जैसे पुराने टाइम में लोग करते थे उपले बना
0: हाँ
1: के
0: जी
1: रखते थे जलाने के लिए,
0: गोटू जिसे ये बोल दे
1: गोटू जिसे बोल दे,
0: हाँ जी
1: तो हम क्या करते कि किसान को बोलते कि हमें प्रॉपर जरूरी नहीं गोटू की फॉर्म में, हमें बस वो ड्राई चाहिए गोबर
0: हाँ
1: कैसा
0: जी
1: भी हो,
0: चाहे
1: बस
0: गोला ही होगा सूखा
1: चाहे
0: होगा।
1: गोला हो सूखा हो। हाँ जी
0: हाँ जी अच्छा
1: बिल्कुल,
0: तो जी जेडे तुहां दे 100 150 किसान जेडे से जुड़े हुए ने उन ते तुहां जी मोल पर गोबर लेंदे होने ने?
1: जी बिल्कुल,
0: अच्छा
1: हमने रखा है 3 रुपए पर kg के हिसाब से उनसे हम लेते हैं जी।
0: अच्छा यानी कि ऐसा छड़ी आंदे आपू या तुहां आपू जाई के लेवणा ते ना दे करे
1: नहीं,
0: ते?
1: जिससे अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो हम अपनी जीप या गाड़ी भेज के वहां से मंगवा लेते हैं उनसे।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: अच्छा यानी कि सूखा गोबर इस चाहिए दा हुंदा ना
1: बिल्कुल,
0: कन तुहां दा एक जेड़ा सा पूरा एक जिसी बोलदे हां समूह है समूह ने जुड़ी के जेड़ा सा सारा काम जेड़ा सा हुंदा है ना।
1: बिल्कुल जी
0: अजय ठाकुर जी अहां दे दिखा पे जियां पहले भी मैं गल कीती है कि सरकार द्वारा भी जियां हिमाचल प्रदेश की गल करिए प्राकृतिक खेती जो बढ़ावा देने दा सरकार द्वारा बड़े भरे प्रयास जेड़े से किते जा करते हैं, मते सारे अहां दे किसान साथी इस पहा जेड़ी से अपनी रुचि भी जेड़ी से रखा करते हैं, तो हां भी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हें जो भी जहां कोई ऐसा संदेश दिया कि सह भी जेड़ा से प्राकृतिक खेती करिए कने जियां जैविक तरीके कने जेड़ा से फसलां जो उगाए कि अपना जेड़ा से भविष्य जेड़ा से बनाई सकन?
1: ऐसा है कि जैसे नौजवान को तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर प्रिसाइज तरीके से और एक मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: हाँ जी
1: और साथ के साथ आपका ये है जैसे अगर आप कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक का आजकल काफ़ी डिमांड है,
0: हाँ जी
1: तो जैसे हमारा जो ऑर्गेनिक ये कंपोस्ट है बायो फर्टिलाइजर है,
0: हाँ जी
1: तो जैसे अगर वो एग्जॉटिक वेजिटेबल या कुछ ऐसी मतलब फसलें उगाएंगे जिनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा के अगर आप उनको बेचे तो काफ़ी अच्छे से वो मतलब बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं।
0: हाँ जी
1: और इस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छे एक फार्मर्स भी हैं, जैसे अदर स्टेट में हरियाणा ले लो, शिमला ले लो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फार्मर्स हैं जो मतलब एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगा के उनसे अच्छा पैसा मुनाफा कमा रहे हैं।
0: हाँ जी जी अजय ठाकुर जी तो हाँ ये दसने की 5 रुखिया अगर तो हाँ करने आई के यहाँ दे किसान साथी मिलना चाहन या कुनी खाद खरीदनी है तो कुतु से होन 5 रुखिया?
1: पंचरुखी में तो एक लदोइया करके है उनके वहाँ पे बीज और उनका रासायनिक जहाँ वहाँ पे उनकी शॉप है वह पंचरुखी में, एक तो वहाँ से ले सकते हैं
0: हाँ
1: और
0: जी
1: अगर वहाँ पे नहीं है तो अगर हमारे पास डायरेक्ट उनको आना है तो वो ब्याड़ा आके हमसे कभी भी मतलब 9 से 5 कभी भी वो हमसे मिल सकते हैं।
0: ब्याड़ा को तो जाए
1: ये आपका पंचरुखी से 1.5 किलोमीटर अंदर है ये।
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा यानी कि इसी एरिया चाहिए है ना?
1: बिल्कुल जी
0: अच्छा जी अजय ठाकुर जी तो हाँ अहाँ कन्ने जुड़े अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रसेलू भाई जी जी की गलबात होआ करदी ही ना जैविक खादा की प्राकृतिक खादा की, ता दिखा जलू अपने लाड़ू स्वाड़ू ते हाँ कोई भी हरी सब्जी भी अगर हाँ गल करी जलू हाँ तोड़ी के आणदे हैं ना टोकरी बिच छाबड़ी बिच पाई के तो तिना फला कना सब्जी दी एक रंग रूप कना बनावटी दिखने का चा लगता।
2: बिल्कुल चा लगता कने ऐसा बोलते ना कि पोस्ट क

0: ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ
1: हाँ
0: ਸਹਿ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰ, ਤਿਹਾਂ ਦੇ
1: हाँ
0: ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਹਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
1: हाँ जी देखो अपने जड़े से क्यारी ते तोड़ियाँ सैलियाँ मिर्चा हुई या पुदीना हुई या सैला बीन हुई या ना,
0: बिल्कुल
1: फिर कितना जिसे बोलते हैं तरो ताज़ा कने बिल्कुल अपने घरे दी देसी सब्जी जड़ी सचदा जिसे बोले हैं ना गल ही नहीं कर सकते हैं कोई। हाँ
0: बिल्कुल कने अगर तो हाँ सब्जियों की गल कर ही दी है तो साथियों ने कुछ साझा करना चाहेंगे गल के जियां के हड़िया किसान साथियों फरवरी कने मार्च में जड़ा सब्जियां दियां फसलां लगाइया जियां टमाटर लगायो बैंगन लगायो मिर्च शिमला मिर्च कद्दू वर्गी ये सारिया फसलां लगाइया इन्हां दी बिजाई रोपाई की ना जी
1: हाँ जी
0: तां भाई तिन्हें यो चाहिए कि इस वक्त जड़ा सा तिना दी निराई गुड़ाई दा सही समय जिहड़ा सा बिल्कुल लगिया क्योंकि ये जिहड़ा वक्त है इस गर्मी तां हंजू
1: हाँ
0: पर्यावरण च दिखने ज़्यादा मिला दी
1: हाँ
0: सोगी सोगी
1: जी
0: जालू तो हाँ सेड़ दिंदे तां घा जिहड़ा सा हुंदा बड़ा भारी उगदा है ना
1: जी
0: जी
1: हाँ जी
0: तां इस वक्त जिहड़ा सा अपने तिना साग सब्जियां दी जिहड़ा निराई गुड़ाई सा कर सकदे बड़ा वधिया टाइम है कने दिखा जी हर एक कनाली च तुहां 2 ते 2.5 किलो यूरिया भी इस वक्त जिहड़ा सा अपने तिना पौधे जिहड़ा सा तुहां दे सकदे हालांकि अहां कोशिश यही हांजो करना चाहिए जियां कि अहां पहले भी बोला दे कि प्राकृतिक जिहड़ा हांजुल संसाधन होंदे हड़े खाद दे है ना
1: हाँ
0: जी जियां गोहा गुंतर अगर अहां तिदा प्रयोग करन तां बड़ी अच्छी गल कने जिहड़ा किसान साथी इस पहुँच नहीं है गोहा गुंतर ही तां भाई सह 21 कनाली च कोई 2 ते 2.5 किलोग्राम यूरिया जिहड़ा सा छिड़की सकदे कने एक ध्यान रखना कि हफ्ते दा कम से कम एक बारी है ना जी
1: हाँ जी
0: अपने पौध जो पानी जरूर तुहां जिहड़ा सा देना है हफ्ते दा एक बारी या फिर 8 ते 10 दिन दे अंतराल विच तुहां जिहड़ा सा पक्का सिंचाई अपने खेत दी जिहड़ा सा करनी है।
1: बिल्कुल हाँ जी दिखा गल वो अगर दी प्राकृतिक खेती दी तो दिखा प्राकृतिक खेती दा सबसे बड़ा जड़ा सा एक सिद्धांत जड़ा ये है कि इस विच हाँ जो एक घट पानी दी जरूरत पौंदी है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि प्रकृति दे अहां से सारियां चीज़ां लैनियां जिससे कि अहां दी फसल अहां दे बगीचा अहां दे उत्पादन कियां होना, तो इस विच हाँ जो घट सिंचाई दी जड़ी सा जरूरत पौंदी है कने बिल्कुल आच्छादन है जिसी अहां बोलते हैं करी के जियां सूखे पत्ते हुई और जियां पराली है कुछ है तो इससे करी के अहां जमीन की नमी जो जड़ा सा बनाए रखते हैं
0: बनाई
1: ना।
0: रखते कने दूसरी एक गल होर हाँ जो याद आती भाऊ जालू अहाँ गोहे गुंतरे का प्रयोग करते हैं उपयोग करते हैं ना जी
1: हाँ जी
0: अपने यदि खेतों में तो तुम देखे होना संगलोए बड़े भारी हाँ जो दिखने मिलते
1: हाँ
0: हैं
1: देखा
0: है
1: कैंचुए
0: ना
1: जड़े
0: जी
1: हैं अहां दे ये
0: हाँ
1: जिसी अहां बोलते हैं ना मित्र है ना
0: मित्र मित्र सब
1: कने हाँ कहना जिसा जिस दिखा जिसा जमीना बिच कैंची हुए ना ये मतलब वो तो सारे पोषक तत्व है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: पोषक
1: पर
0: तत्व है कने सर जी तो हाँ गल की कि पानी दी आवश्यकता भी तो तू घट होंगी जे तू तो हाँ अगर रासायनिक खादा ने करा दे खेती ते तू तो जो हफ्ते का एक बारी सेड़ देना पौना कने जे तू
1: हाँ
0: अगर तो हाँ प्राकृतिक विधि ने खेतीबाड़ी कराए ते तिसे तो हाँ 10 ते 12 15 दिन भी ले सकदे तो हाँ दूआ सेड़
1: हाँ
0: लगाने
1: बिल्कुल दिखा सगलो जड़े है ना रसिलू राम जी
0: जी
1: ये अहाँ दी जड़ी जमीन दी मिट्टी इसे उपजाऊ शक्ति जो जड़ा सा बनाते हैं एक तो ये हा कि ये जल जमीन बिच जड़ा सा जल ये ना
0: छेद
1: कोई
0: कर दे
1: छेद कर दे ना
0: जी
1: तेदी एक लिपाई भी कर दे जाते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल
1: कि जल बरखा होनी तो बरखा पानी जड़ा सा जमीन बिच चली जाता हा।
0: बिल्कुल
1: दूए पहा जल वहां अंधा धुंध छिड़काव करना शुरू किते दिखा सगड़ो तो ही मरी ये सारे
0: सही नहीं नहीं
1: कहना
0: प्रजाति सह बोलता ना खतरे
1: कहना
0: च आइए
1: जमीना जड़ी है सारियां जिसकी यहां बोलते ना एक पूरी सप्पड़ टाइप
0: सप्पड़
1: जड़ियां
0: बिल्कुल
1: बनी
0: बिल्कुल
1: है जमीना ने ताकि जिससे कि जितने भी अहां दे जड़े मित्र जड़े सह ये अहां दे कीट है
0: कीट एन पतंगे जो
1: पतंगे है
0: भी
1: ये सब जड़े सह अहां दवाई छिड़की छिड़की के सारे जड़े सह तहस नहस करे हड़े।
0: बिल्कुल कहना दिखा जी एक होर धारणा पाऊ बनी चुकी हड़े सारे किसानों की कि जालू दिकर हाँ छिड़काव नहीं करके हड़ी फसल भी तैयार नहीं होनी अच्छी
1: हाँ
0: नहीं होनी
1: हाँ
0: कने स्वस्थ नहीं होनी पर दिखा जी ये धारणा थोड़ी हो सकता गलत भी हो सकती क्योंकि अगर तो हाँ किसी भी प्रकार की फसल करगे, चाहे रसायना ने करगे चाहे उइया करगे, जालू कोई किसी पर भी प्रकार की बीमारी होंगी तो एक तो हाँ जो जानकारी की अभाव होंगे कि अगर हड़ी पौध सुकिया तो क्या वजह रही है ना जी, सो वजह पता नहीं होंगी कि ना अह इलाज जोड़ा आपू तो ही करना लगी पौधे तो इन सारिया चीज़ों पर थोड़ा जहा हाँ जो जागरूक होने की जरूरत है। अगर तो हाँ खेतीबाड़ी करा दे तो हाँ जो ये भी पता होना चाहिए कि लक्षण क्या है हड़िया जड़ा हाँ बेलां लगाइया या तिना उपर किस प्रकार की मतलब कोई बदलाव आवा दा है ना जी, जियां कई बार पत्ते चिट्टे हो जाते प्योले हो जाते,
1: हाँ जी हाँ जी
0: कई बार कुछ हो दा, कई बार झड़ी आ दे, तो यह सारिया चीज़ों की थोड़ी देई भाई अगर तो हाँ फायदा लेना है जमीना ते कने तो हाँ अच्छा उत्पादन करना है अच्छा खाना है तो यह छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी तो जो रखना पौनी कने दिखाई नज़दीकी विज्ञान केंद्र होंगे थोड़े तिथि जाइए तो हाँ डॉक्टर ने सलाह मशवरा भी कर सकते कने थोड़ियाँ जी हटियाले पर भी तो थोड़ी सलाह देंदे रहते ध्यान ने सुन तो काफ़ी कुछ तो फायदा जोड़ा सा हो सकता
1: जी। कने हूँ जोड़ा फायदा हाँ भाई करना सह यह है कि अहाँ सुनना एक लोकगीत है ना
0: जी जी जी
1: जी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:45 होने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
1: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
0: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लगघाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस दौरान बंपर वोटिंग हुई और मतदान 80% रहा। प्रदेश में अब तक हुए पंचायती राज चुनावों में ये सर्वाधिक मतदान है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश की कुल 1279 पंचायतों में वोट डाले गए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और आज रात तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल्लू जिला में सर्वाधिक 86%, सिरमौर जिले में 85%, सोलन जिला में 84, ऊना जिला में 80, कांगड़ा व किन्नौर जिला में 76, लाहौल स्पीति में 69, हमीरपुर में 75, बिलासपुर में 79, चंबा 78 और मंडी व शिमला जिला में 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज हुए मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खासकर बुजुर्ग मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में जोरदार उत्साह दिखाया। शिमला जिले के रोहडू विकासखंड की ब्रासली पंचायत की 110 वर्षीय सुरतु देवी, बिलासपुर जिला की कसारू पंचायत की 108 वर्षीय रूपा देवी, दकड़ी पंचायत की 107 वर्षीय मनभरू देवी, रोहडू क्षेत्र की दियुदी मायला पंचायत की 107 वर्षीय बालादेई, बिलासपुर जिला की हरनोड़ा पंचायत के 106 वर्षीय संतराम, नूरपुर विकास खंड की पंजहड़ा पंचायत के 105 वर्षीय बाबूराम, बिलासपुर की बलसीना पंचायत की 100 वर्षीय नारायण देई और शिमला जिला की कोहलू जुब्बड़ पंचायत की 98 वर्षीय चम्मी देवी स्वयं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची। आज मतदान करने वाले प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ने भी अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वोट डाले। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 मई को होने वाले मतदान के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इसके बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं से वोट मांगकर अपनी अपनी जीत पक्की करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में तीसरे चरण में 1187 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान व सरपंचों का चयन होगा। इस दौरान इन पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। जिला परिषद, पंचायत समितियों और 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के वोटों की गिनती 31 मई को होगी और इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। कुल्लू जिला की लगघाटी की बड़ई बाग पीज सड़क पर आज एक टैक्सी वाहन के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 महिलाओं की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा और वाहन चालक शामिल हैं। ये लोग पंचायत चुनाव में वोट डालने के बाद शिरड़ मेला देखने जा रहे थे। घायलों को कुल्लू के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तीनों मृतक महिलाएं एक ही गांव बेधर की रहने वाली है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज चुनावों में अपनी हार देख कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनावों से इसलिए दूरी बना ली क्योंकि उसे पहले ही अपनी हार का आभास हो गया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को झूठ के सहारे जनता के वोट हासिल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर लोगों को लुभाने का प्रयास किया, लेकिन अब जनता कांग्रेस की चालाकी को समझ चुकी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि सरकार प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक ऐसा स्कूल स्थापित करने का प्रयास कर रही है जिससे दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी और इनमें स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार यानी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा एक बार फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है। भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री ने 27 मई को शिमला जिला के नेरवा में स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण की घोषणा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव आज धर्मशाला में शुरू हुआ। इस मौके पर निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा सेरिंग ने कहा कि इस सांस्कृतिक उत्सव का उद्देश्य भारत के लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत करवाना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। तो तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश नहीं। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, भारत का एक विजडम हम लोग अभी तक उसको संभाल के रखा है। तो ये सब समझने के लिए अभी ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हमारे सोच ये है कि अगर फंडिंग ज्यादा तो हम लोग और ज्यादा कर सकें, तो भारत के दूसरे सिटीज में कर सकें।
0: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव को भारत और तिब्बत की संस्कृति के संगम का प्रतीक बताया।
2: भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है। हम लोग यहाँ चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, एक समाज की तरह साथ रहते हैं और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य में आज कुछ स्थानों पर सुबह से ही हल्के बादल छाए रहने से तापमान में कुछ कमी आई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 3 जिलों कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। ईद अल अजहा यानी बकरीद का पर्व आज प्रदेश भर में उत्साहपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों में जाकर ईद की नमाज अता की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने अमन, शांति और खुशहाली की दुआ भी मांगी। राजधानी शिमला में ईद की मुख्य नमाज ईदगाह मैदान में अदा की गई। चंबा में भी ऐतिहासिक चौगान नंबर 5 में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर जहां छोटे छोटे बच्चे नई पोशाकों में उत्साहित नजर आए, वहीं बुजुर्गों ने भी उत्साह के साथ नमाज में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग, 80% रहा मतदान। कुल्लू की लगघाटी में वोट डालकर लौट रही महिलाओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बादल छाए रहने से तापमान में हल्की गिरावट, आज से मौसम बदलने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

0: देशगान अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गजल।

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान के का गाया हुआ ये कलाम।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ाली ब्रदर्स की आवाज़ में ये गीत।

सतिंदर सरताज की आवाज़ में गाए इस पंजाबी गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं लवली निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और

0: भी चिंता करे।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ DK शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3 करोड़ 91 लाख घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा

0: पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज 6वें दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़क

0: संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओ, एक ही शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता अक्षय कुमार पर फिल्माए गए कुछ गीत। अक्षय कुमार, जिनका वास्तविक नाम राजीव हरिओम भाटिया है, उनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं और निर्माताओं में से एक हैं। अपनी बेहतरीन फिटनेस और एक्शन के लिए जाने जाने वाले अक्षय ने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर, पंजाब में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हरिओम भाटिया एक आर्मी ऑफिसर थे और माता अरुणा भाटिया एक गृहिणी थी। अभिनेता बनने से पहले उन्होंने बैंकॉक यानी थाईलैंड से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और वहाँ एक रेस्टोरेंट में वेटर और शेफ का काम भी किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया, जहाँ से उन्हें मॉडलिंग और फिर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। तो आइए सुनते हैं अक्षय कुमार पर फिल्माया एक और गीत।

अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्मों के गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार में। अक्षय कुमार ने 1991 में फिल्म सौगंध से अपने करियर की शुरुआत की थी, हालांकि उन्हें असली पहचान 1992 में आई फिल्म खिलाड़ी से मिली, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड का खिलाड़ी कहा जाने लगा।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आज आप एक ही कलाकार में सुन रहे हैं, अभिनेता अक्षय कुमार पर फिल्माए कुछ गीत। अक्षय कुमार ने साल 2001 में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना, जो कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं, उनसे शादी की। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा आरव और बेटी नितारा। फिल्मों की बात करें तो अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्में खिलाड़ी, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हेरा फेरी, गरम मसाला, मुझसे शादी करोगी, भूल भुलैया और हाउसफुल, एयरलिफ्ट, पैडमैन, टॉयलेट, एक प्रेम कथा इत्यादि काफ़ी लोकप्रिय फिल्में हैं।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गजलें।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल निकाह फिल्म से, उमराव जान फिल्म से ली गई ये गज़ल अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

अनूप घोषाल की आवाज़ में मासूम फिल्म से ली गई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गज़लें। भूपेंद्र सिंह को अब लीजिए सुनिए मौसम फिल्म में।

तलत अज़ीज़ की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ फिल्मी गज़लों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं लोकगीत।

शेर सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत आप सुन रहे थे। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं इंद्र राज की आवाज़ में।

शेर सिंह की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म।

रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया।

श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत, कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। दोस्तों, जॉन एलिया का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, वो कहते हैं कि सिलसिला ना होता तो कोई गिला ही ना होता, सिलसिला ना होता तो कोई गिला ही ना होता, या तो मिल गया होता या मिला ही ना होता।

मिले ज़माने से फुर्सत तो वो मुझे याद करते हैं, मिले ज़माने से फुर्सत तो वो मुझे याद करते हैं, मानो मेरा हाल पूछकर मुझ पर एहसास करते हैं।

किसी ने क्या खूब कहा है, कहते हैं कि अंदाज हमें भी आते हैं नज़र अंदाज करने के, अंदाज हमें भी आते हैं नज़र अंदाज करने के, पर तू भी उसी दर्द से गुज़रे ये हमें गवारा नहीं।

0: श्रोताओ, उसका जाना एक दिन का था, मेरा बिखरना हर शाम का है। उसका जाना एक दिन का था, मेरा बिखरना हर शाम का है। वो एक लम्हे में रिहा हो गया और मैं ताउम्र उसकी यादों में कैद रह गई। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए, नमस्कार। रात्रि के 11 बज चुके हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डी के शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार

पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।